ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शकसंवत 1948 के वैशाख माह की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 मई सन 2026। सवेरे के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की ये पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: जी आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सभा की शुरुआत में आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूबनगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता

0: के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के दो दो विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सवेरे के 6:05 हुए हैं। समय हुआ है श्री रामचरितमानस का। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस का भाग 399।

काक भुशुंडी से श्री रामचरित और स्वयं उनके पूर्व जन्मों की कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ के मन का संशय सर्वथा मिट गया। किंतु एक प्रश्न फिर भी उनके मानस में कौंध था। प्रश्न था कि संत, ऋषि मुनि, वेद सभी ज्ञान को सर्वाधिक दुर्लभ उपलब्धि बताते हैं, किंतु काक भुशुंडी ज्ञान को

भक्ति का सा स्थान नहीं देते। ज्ञान और भक्ति में कितना और क्या अंतर है? काकभुशुंडी ने उत्तर दिया, हे पक्षीराज, ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है, दोनों ही भौतिक दुख दैन्य मिटाने वाले हैं। ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान, ये सब पुरुष हैं, जिसका प्रताप प्रबल होता है। इसके विपरीत माया और भक्ति स्त्री वर्ग की हैं। ज्ञानी भी चंद्रमुखी हिरण सी आंखों वाली स्त्री का रूप देखकर मोहित हो जाते हैं। उधर माया दूसरी स्त्री अर्थात भक्ति को देखकर सकुचा जाती है। रघुनाथ जी को भक्ति अधिक प्रिय है, अतः माया भक्ति से सदा भयभीत रहती है।

आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर की आवाज़ और सतीश भाटिया के संगीत संयोजन में श्री राम चरित मानस। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सुविचार।

हर दिन खुद से एक वादा कीजिए कि कल से बेहतर आज बनाना है। यही छोटा बदलाव बड़े परिणाम लाता है। हर नई सुबह एक मौका लेकर आती है अपने सपनों को और करीब जाने का। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा धैर्य और सच्ची लगन, यही मिलकर सफलता की कहानी बनाते हैं। इस सुविचार के साथ आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन यहीं समाप्त तो होता है। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सवेरे के 6:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं फिल्म तमाशा से अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाजों में ये गीत।

0: तीन महीने में पैसे डबल,
1: वाह,
2: फास्ट और हाई रिटर्न्स भी।
0: क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ
3: और कल होगा भी नहीं।
0: तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है?
4: ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं।
0: और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो, अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे।
3: और फास्ट रिटर्न से बच के
0: और फास्ट बॉलिंग से भी।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए ये अगला गीत जसलीन रॉयल और प्रतीक कुहाड़ की आवाजों में। फिल्म का नाम है बार बार देखो।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत का ये आखिरी गीत। फिल्म मद्रास कैफे से पैपॉन की आवाज़ में बोल है अली हयात के और धुन दी है शांतनु मोइत्रा ने।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सवेरे के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं कुछ बातें कुछ गीत।

आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत। आज की सुबह थोड़ी खास है, थोड़ी भावुक, थोड़ी मुस्कुराती हुई, क्योंकि आज बात उस इंसान की जिसका नाम लेते ही दिल को सुकून मिलता है, माँ। वो रिश्ता जो बिना शर्त प्यार करता है। हम बड़े हो जाते हैं, लेकिन माँ के लिए हम हमेशा बच्चे ही रहते हैं। आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे माँ के बारे में और कुछ गीत उस प्यार के नाम जो शायद दुनिया के सबसे सच्चा एहसास है।

जिंदगी का पहला सुकून अगर कहीं मिलता है तो वो माँ की गोद में है। जब दुनिया की कोई चिंता नहीं होती, बस एक आवाज ही काफी होती है, मैं हूं ना। माँ का हाथ सिर पर हो तो डर भी छोटा लगने लगता है। शायद इसीलिए दुनिया

कितनी भी बदल जाए, माँ की ममता कभी पुरानी नहीं होती। बचपन में जब हम रोते थे तो माँ बिना कुछ पूछे हमारा दर्द समझ जाती थी। वह लोरी की आवाज, वह माथे पर हाथ फेरना आज भी याद आता है। दिल को एक अजीब सा सुकून दे जाता है और सच कहे तो जिंदगी का सबसे सुरक्षित एहसास शायद वही होता है, माँ के पास होना।

माँ की बातें हमें अक्सर बहुत छोटी छोटी लगती हैं। खाना खा लेना, जल्दी घर पे आना, सुन अपना ध्यान रखना। लेकिन जब हम घर से दूर होते हैं तो यही बातें हमें सबसे ज़्यादा याद आती हैं। माँ शायद प्यार जताना नहीं जानती, लेकिन उसका पूरा दिन हमारी चिंता में गुजर जाता है। और सच कहे तो माँ का प्यार शब्दों में नहीं, उसकी इन्हीं आदतों में दिखता है। वह खुद चाहे थक जाए, लेकिन हमारे लिए समय हमेशा निकाल लेती है। और शायद हम जितने बड़े होते जाते हैं, उतना ही समझ आता है कि माँ की ये छोटी छोटी बातें दरअसल हमारे लिए सबसे बड़ी दुआएं हैं।

कभी गौर किया है कि माँ अपने हिस्से की खुशियाँ बहुत ही आसानी से छोड़ देती है। बच्चों की ज़रूरतों के आगे वे अपनी इच्छाएं भूल जाती है। कई बार हमने उनकी थकान नहीं देखी, कई बार हमने उनकी चुप्पी नहीं समझी, लेकिन माँ बिना शिकायत किए सब निभाती रहती है। कभी अपनी पसंद का खाना छोड़ देना, तो कभी रात भर जागना, कभी अपनी परेशानी को छुपा लेना, ये सब माँ चुपचाप करती है। शायद इसीलिए माँ को सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक एहसास कहा जाता है।

समय के साथ हम बड़े हो जाते हैं, काम, जिम्मेदारियां और अपनी दुनिया में उलझ से जाते हैं, लेकिन माँ वो वही रहती है उसी इंतजार के साथ। बस अब वो पहले की तरह डांटती नहीं है, बस वह जो डांट थी वे सवालों में बदल गई है। खाना खाया, तू ठीक तो है ना? और शायद यही सबसे खूबसूरत बात है, माँ बदलती नहीं। उम्र के साथ अपनी जिंदगी में हम व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन माँ का दिन आज भी हमारे एक फोन से अच्छा हो जाता है। और सच कहे तो घर वही लगता है जहाँ माँ की आवाज सुनाई देती है।

मदर्स डे सिर्फ एक तारीख नहीं है, सिर्फ एक दिन नहीं है। माँ के लिए प्यार किसी एक दिन का मोहताज नहीं होता, लेकिन शायद ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम अक्सर उस इंसान को धन्यवाद कहना भूल जाते हैं जिसने बिना किसी उम्मीद के हमारे लिए पूरी ज़िंदगी लगा दी। तो आज बस एक बार माँ के पास बैठिए और कह दीजिए, आप हो इसलिए सब अच्छा लगता है। कभी कभी एक छोटा सा थैंक यू और थोड़ा सा समय माँ के चेहरे पर सबसे बड़ी मुस्कान ले आता है।

माँ को शायद महंगे तोहफों की जरूरत नहीं होती, उन्हें चाहिए तो बस थोड़ा सा वक्त, थोड़ा अपनापन और ये एहसास कि उनके बच्चे खुश हैं। तो आज अगर मौका मिले तो माँ को गले लगाइए, क्योंकि माँ जैसा प्यार दुनिया में दूसरा नहीं होता। आप सुन रहे थे कुछ बातें कुछ गीत।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार व उसके बाद अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप

0: से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मंकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
1: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
3: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरपू से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल हैं। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस, वीसी के, वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
4: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए को 18 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर एनडीए विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद एनडीए विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता के

0: सुरक्षा पर दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों

0: काफी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
3: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमरीकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B, H-1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
2: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
4: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
2: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
2: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त। अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने

0: को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमरीकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, मां होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to visit Karnataka and Telangana today to launch multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad and participate in 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. TVK Chief C. Joseph Vijay to be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu this morning. President Draupadi Murmu appoints N. Rangasamy as Chief Minister of Puducherry. Centre operationalises 4 labour codes with publication of rules. DRDO achieves major breakthrough in hypersonic missile development by conducting long-duration test of scramjet combustor. And 9 Indian boxers advance to finals of Asian Boxing Under 15 and Under 17 Championships in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. More from our correspondent.
3: Prime Minister Narendra Modi will address the devotees of Art of Living Foundation and inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir or Meditation Hall at the premises. He will also launch the year-long projects of the foundation on mental well-being, rural development, nature conservation and social transformation. Before proceeding to Art of Living International Centre, the Prime Minister will address the BJP leaders and workers at HAL Airport. The leader of the opposition Karnataka Legislative Assembly, R. Ashoka, has informed that the Prime Minister will be honoured with Mysore Pet and silk shawl for the party's recent electoral victory, and around 15,000 people will attend this meeting. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
2: Thereafter, Prime Minister Narendra Modi will travel to Hyderabad. At around 3 p.m., he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in the state. Mr. Modi will lay the foundation stone for the four-laning of National Highway 167 from Guddebellur to Mehboob Nagar on the Hyderabad-Panaji Economic Corridor at a total project cost of over 3,175 crore rupees. The Prime Minister will also inaugurate the PM Mitra Park at Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, developed under the PM Mitra

जय हो शुभ हो माय डियर रेडियो लवर्स, सूर्य नगरी में सूर्यदेव अपनी हॉट हॉट किरणों के साथ हमारी सुबह को भी हॉट हॉट करने के लिए हाजिर हो चुके हैं। और इसी के साथ आकाशवाणी के सूर्य नगरी चैनल पर हम हाजिर हो चुके हैं आप सभी का फेवरेट मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार लेकर। अब बात सूर्य की और उसकी हॉट पंती की होती है तो दोस्तों माइंड में आती है धूप, परछाई और इस धूप में थोड़ी सी छांव की तलाश। और इसी से एक बहुत ही खूबसूरत सी बात याद आती है श्रोताओं कि दूसरों की छांव में खड़े होकर हम अपनी परछाई खो देते हैं। अपनी परछाई बनाने के लिए हमें खुद धूप में खड़ा होना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है, खुद को निर्मित करना है, तो परिश्रम के अलावा हमें कोई अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता।

जी श्रोताओं, और अगर आपको अपनी लाइफ को थोड़ा सुकून देना है, थोड़ी सी बातें याद करनी है, तो सिंपल सी वो बात याद रखिए जहां पर हो हंसी की यादें, सुकून की हवा, क्योंकि यही तो है एक खुशनुमा सुबह की दवा।

जी अश्वत, तो सुबह की खुशनुमा सुबह बनाने के लिए उसकी दवा जो हम आपके साथ लेकर आए हैं वो है नमस्कार की पूरी टीम। तो चलिए चलते हैं नमस्कार की पूरी टीम से एक परिचय के लिए। टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं ट्रांसमीटर पर हमारा साथ कौन दे रहे हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं पी के सेन और कैलाश चंद्र सोलंकी।

कंट्रोल रूम से कंट्रोलिंग कर रहे हैं पारसपुरी गोस्वामी। श्रोताओं, हमारे साथ अनाउंसर ऑन ड्यूटी हैं शुभम और सत्येंद्र।

0: हमारे प्रोग्राम में कोऑर्डिनेशन है राजेश लामरोड का। और श्रोताओं, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं संजय व्यास। नमस्कार की पूरी टीम के साथ मैं हूं सीमा शर्मा और मेरे साथ
1: न्यू नूतन सोनी।

0: दोस्तों, आज है मदर्स डे, यानी कि वो एक तरह से बगिया जिसके प्यार और विश्वास के फूलों से सदा हमारे जो जीवन की बगिया है वो महकती ही रहती है और हम उसकी छांव में एकदम चहकते ही रहते हैं। लेकिन वो जो माँ है ना, अपने बारे में बहुत कम सोचती है, क्यों?
1: बिल्कुल, इसीलिए ये जो गीत था ये उन सभी माओं के लिए था जो हमेशा अपने अलावा बाकी सबके लिए सोचती हैं, अपने परिवार के लिए, सब जो रिश्तेदार हैं उनके लिए, लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं। तो बस हम यही कहेंगे उन सभी माओं को कि जीते हैं, चल कुछ देर अपने लिए भी आप जिए। क्योंकि
0: बिल्कुल
1: नूतन हम देखते हैं कि कोई भी प्रोफेशन होता है उसमें अगर पर्सन जो है इंटरव्यू के टाइम पे अपनी सैलरी की डिमांड करता है तो एक मोटी अच्छी खासी रकम की सोच दिमाग में चलती है और इतनी डिमांड भी कर देता है। लेकिन एक माँ ही ऐसी होती है जो 24/7 अपना काम करती है, लेकिन बात सैलरी की जब आती है तो बस क्या चाहती है, रिश्तों में प्यार, अपनापन और विश्वास।
0: और वो जो
1: तो
0: घर में सैलरी आती है ना, उस सैलरी को जो है फूड में, सोने के लिए बिस्तर में, मकान को, घर, सब कुछ अगर देखा जाए तो माँ ही बनाती है उस सैलरी से।
1: बिल्कुल, तो जो सैलरी कमा के लाई जाती है और माँ मकान को घर बनाती है, तो बस उस माँ के काम की अगर हम सैलरी देना चाहें तो हम इतना ही करेंगे कि हर वक्त माँ को दें बहुत सारा प्यार और परिवार।
0: बिल्कुल।

डियर लिसनर्स, आज हम ऐसे सब्जेक्ट पे बात करने जा रहे हैं जो सुनने में तो बड़ा ही नॉर्मल सा लगता है, लेकिन हमारी लाइफ को भीतर ही भीतर बहुत बदलने की ताकत रखता है। और वो सब्जेक्ट है खुद से बात करना, और खुद से बात करने की क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में।

0: बातें करते हैं फैमिली मेंबर से, फ्रेंड से, कलीग से, सोशल मीडिया, लेकिन क्या कभी हमने खुद से बात करने का समय निकाला है? क्या कभी खुद से पूछा है कि मैं सच में कैसा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ? क्या मैं खुश हूँ? क्या जो मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ वही करना चाहता हूँ? तो ये जो भागदौड़ बड़ी जिंदगी है, इसमें जो है इंसान सबसे ज्यादा अगर किसी से बात करना चाहता है तो खुद से बात करते हुए सुकून का महसूस कर सकता है, लेकिन खुद से बात करता नहीं है। खुद से बात करना यानी कि अपने मन की आवाज़ सुनना, और ये कोई पागलपन नहीं है दोस्तों, बल्कि ये एक तरह से आत्मचिंतन की बहुत ही खूबसूरत प्रक्रिया है।
1: जी श्रोताओं, खुद से बात करना अगर आप कहें तो एक मेडिसिन के तौर पर भी काम करता है, क्योंकि कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समाते जाते हैं लेकिन खाली करने के लिए कभी भी उसे मौका नहीं मिल पाता। तो खुद से बात करना एक ऐसा, खुद के लिए ही कहते हैं ना, सुकून भरी बात होती है जब आप अपने आसपास कुछ और नहीं, सिर्फ एक अकेलापन लेकर के बैठें और खुद को पूरी तरह खुद से खाली कर दें। ये एक मेडिसिन के तौर पर भी काम करता है श्रोताओं, और सच में बहुत बड़ी काम की बात हो जाती है।

हम बात कर रहे थे आत्मचिंतन की, जिसे हमने बताया कि बहुत ही एक अच्छा प्रोसेस है जब हम अकेले बैठकर अपने विचारों को समझते हैं और जब अपने आप से बात करते हैं तो पहले पता चलती है खुद के द्वारा की गई गलतियां, और कहीं ना कहीं उनको स्वीकारने का मन ही मन मौका भी मिलता है। और अपने सपनों के बारे में सोचते हैं हम, जब हम खुद से बात करते हैं तब हम खुद को बेहतर तरीके से जान पाते हैं, समझ पाते हैं। दोस्तों, अक्सर हम दूसरों की सलाह सुन तो लेते हैं लेकिन अपने दिल की बात कहीं ना कहीं अनसुनी कर देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हमारे कई सवालों के जवाब हमारे भीतर ही छुपे होते हैं। और खुद से बात करने के कई फायदे भी हैं, जैसे कि हमको एक तरह से मानसिक शांति मिलती है। जब मन में बहुत सारे विचार डिस्को मचा रहे होते हैं, तनाव हो, उलझन हो, तब खुद से खुलकर बात करना मन को हल्का कर देता है और कई बार अपनी परेशानियां किसी से कह नहीं पाते, लेकिन खुद से बात करके मन का बोझ कम कर सकते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया। समग्र बौद्धिक विकास पर आज नई दिल्ली में परामर्शदाता सम्मेलन का आयोजन। प्रदेश भर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने अदालत में राजीनामे के जरिए लगभग 47 लाख मामलों का निस्तारण किया गया। और मातृत्व दिवस पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि श्री सुब्रमणि पदभार ग्रहण करने के साथ ही सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। केंद्र ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को अगला नौसेना प्रमुख भी नियुक्त किया है। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि भारतीय सेना के अनुभवी और प्रतिष्ठित अधिकारी हैं। वे वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में काम कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे वहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री का हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करने का कार्यक्रम है। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रूपये की है। समग्र बौद्धिक विकास पर आज नई दिल्ली में परामर्शदाता सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से ये आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास

0: के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। बोर्ड ने बताया कि इस परियोजना के दूसरे चरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 60 से अधिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य और परामर्शदाता भाग लेंगे। ये परियोजना इस साल जुलाई से 6 से 8 कक्षा के विद्यार्थियों के लिए लागू की जाएगी। इसके तहत कल्याण मॉड्यूल, सहकर्मी सहायता गतिविधियां और अभिभावक सहभागिता कार्यशालाएं शामिल हैं। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भिवाड़ी में जलभराव की समस्या के निवारण के लिए 34 एमएलडी का एसटीपी प्लांट तैयार हो गया है। इसका उद्घाटन इसी सप्ताह मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा करेंगे। इसके अलावा सीईटीपी से पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन डालने का काम भी जल्द शुरू होगा और नेशनल हाईवे 919 की समस्या का भी समाधान जल्द किया जाएगा। श्री यादव कल अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार हर क्षेत्र में प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और वे अलवर जिले के विकास के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे।
1: भिवाड़ी की जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है पानी की है। हमने 34 एमएलडी का जो संयंत्र है वेस्ट पानी का, उसको कंप्लीट कर लिया है और माननीय बालकनाथ जी के साथ जो एक काम पूरा हुआ है, इसी हफ्ते में मुख्यमंत्री जी को बुला करके उसका उद्घाटन करेंगे। पानी को निकालने के लिए जो पाइपलाइन का विषय है उसकी भी पैसा आवंटन करा दिया है और उसका भी उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी से करा के ये काम हम करेंगे। और जो हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उसका भी हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी डीपीआर तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहला काम तो इसका 2/3 हिस्सा तो अब उद्घाटन हो जाएगा, 1/3 हिस्से का टेंडर हो जाएगा और बाकी बचा हुआ एनएचआई से हम जल्दी से जल्दी पूरा करा
0: सकते। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अजमेर के एक दिन के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे पुष्कर क्षेत्र के कडेल गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित ग्राम विकास चौपाल में भाग लेंगे। चौपाल में श्री शर्मा ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों की जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री का कल गांव का भ्रमण कर स्थानीय व्यवस्थाओं और विकास कार्यों के अवलोकन का भी कार्यक्रम है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देशभर में आयोजित इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत प्रदेश में राजीनामे के जरिए कुल 46,91,311 मामलों का निस्तारण किया गया। इनमें 7,15,00,00,000 रूपये से अधिक के अवार्ड जारी किए गए। लोक अदालत में राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने उपस्थित पक्षकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इस अदालत के माध्यम से ऐसे मामलों को तय किया जाता है जिसे पक्षकार का समय और दोनों बचाया जा सके। कई पक्षकारों के बीच सिविल और छोटे आपराधिक प्रवृत्ति के मुकदमे आपसी राजीनामे से सुलझाए जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। प्रदेश भर में आज मातृत्व दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। ये दिन माताओं के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मातृत्व दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि मां सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि ममता, त्याग और समर्पण की सबसे पवित्र भावना है। उन्होंने कहा कि मां हमारे जीवन की पहली गुरु होती है, जो हमें संस्कार, साहस और सही मार्ग पर चलना सिखाती है। मातृत्व दिवस पर पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज मदर्स डे के अवसर पर पूरा प्रदेश अपनी माताओं के सम्मान में भावनाओं के रंगों से सराबोर है। कहीं बच्चे अपनी मां को उपहार दे रहे हैं तो कहीं मां के सम्मान में कार्यक्रम और समारोह रखे जा रहे हैं। मां वह कविता है जिसे शब्दों में पूरा नहीं लिखा जा सकता। वह घर की धड़कन है जो अपने सपनों को चुपचाप बच्चों की मुस्कान में बुन देती है। उसकी दुआएं जीवन की हर कठिन राह को आसान बना देती हैं। आज का दिन केवल उत्सव नहीं बल्कि उस अनकहे प्रेम को महसूस करने का अवसर है।

0: जो माँ हर दिन बिना किसी अपेक्षा के हमें देती है। आइए इस विशेष अवसर पर हम अपनी माताओं को केवल धन्यवाद ही नहीं बल्कि सम्मान, समय और अपनापन भी दें। प्रदेश की सभी माताओं को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार कक्ष से ज्योति पारीक।
1: प्रदेश में मौसम के दो रूप देखने को मिल रहे हैं।

0: बारिश हुई। नागौर के मेड़ता में 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। हालांकि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल और परसों बीकानेर संभाग, शेखावटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं कहीं आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है।
1: आगामी 2-3 दिनों में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने और पश्चिमी राजस्थान में अगले 4-5 दिन हीट वेव का दौर दर्ज होने की प्रबल संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में अगले 2-4 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा केवल उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में 11, 12 और 13 मई को मेघ गर्जन और कहीं कहीं आंधी चलने की संभावना है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया। समग्र बौद्धिक विकास पर आज नई दिल्ली में परामर्शदाता सम्मेलन का आयोजन। प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामे के जरिए लगभग 47 लाख मामलों का निस्तारण किया गया। और मातृत्व दिवस पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: श्रोताओं, समाचारों के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। और आज के दिन की अगर हम बात करें श्रोताओं, तो आज है 10 मई और 10 मई अपने साथ जो खास बात लेकर आया है हम बिल्कुल आपके साथ शेयर करेंगे। श्रोताओं, आज यानी कि 10 मई 1980 को जन्म हुआ था कैप्टन योगेंद्र सिंह का। पिता करण सिंह यादव जो कि कुमाऊं रेजिमेंट में थे और 1965 और 1972 के युद्धों में भाग ले चुके थे। उनके बड़े भाई भी सेना में कार्यरत थे। 1996 में महज 16 साल की उम्र में भारतीय सेना में आपने प्रवेश किया था। जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान उन्हें लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बंकरों पर कब्जा करने वाली घातक प्लाटून का नेतृत्व सौंपा गया था। श्रोताओं, इस दौरान उन्हें 15 से अधिक गोलियां जो थीं हाथ और पैर दोनों पर लगीं, जिससे उनके पैर और हाथ बहुत बुरी तरह घायल हो गए। अत्यधिक खून बहने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बेल्ट की मदद से अपने हाथों को बांध दिया और फिर रेंगते हुए दुश्मन के 3 बंकरों को नष्ट किया। उनके इस अदम्य साहस और प्रेरणा से उनकी प्लाटून ने टाइगर हिल पर पुनः तिरंगा फहरा दिया श्रोताओं, और इस साहस के लिए उन्हें नवाजा गया परमवीर चक्र से।
3: और श्रोताओं, इसी के साथ आज जन्मदिन है सुभाष सी कश्यप का, जो 7वीं, 8वीं और 9वीं लोकसभा के पूर्व महासचिव और 1984 से 1990 तक लोकसभा सचिवालय के प्रमुख रहे हैं। वे एक प्रख्यात राजनीतिक वैज्ञानिक, भारतीय संविधान और संवैधानिक कानून, संसदीय मामलों के विशेषज्ञ और एक प्रतिष्ठित विद्वान हैं। वे 1953 से भारत की संसद से जुड़े रहे हैं। उन्होंने 1983 तक जिनेवा स्थित राष्ट्रीय संसदीय प्रलेखन केंद्र यानी कि आईपीयू का नेतृत्व भी किया। इस तरह वे किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय रहे। श्रोताओं, कश्यप पंचायती राज कानूनों और संस्थानों पर भारत सरकार के मानद संवैधानिक सलाहकार भी रहे हैं। उन्होंने संविधान कानून और राजनीति विज्ञान पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्राप्त उन्हें हुए हैं। वर्तमान में डॉक्टर कश्यप नई दिल्ली में स्थित नीति अनुसंधान केंद्र यानी कि CPR में मानद शोध प्रोफेसर हैं। वे संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग के सदस्य और उसका जो मसौदा और संसदीय समिति तैयार करने के लिए जो एक समिति होती है उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। वे एक राष्ट्र एक चुनाव के निर्माण में शामिल उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख सदस्यों में से एक रहे हैं। दोस्तों, डॉक्टर कश्यप ने भारतीय राष्ट्रीय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। इन्हें लोक मामलों में क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया है।

0: का दिन क्या कहता है। 1857 में 10 मई का भारतीय इतिहास में एक विशेष महत्व है श्रोताओं, क्योंकि इसी दिन 1857 में मेरठ से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई, जहां सैनिकों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। और बात करें 1908 की, तो अमेरिका में पहली बार मदर्स डे मनाया गया था।
1: जी श्रोताओं, और भी हम बढ़ते हैं 10 मई की तरफ आगे, तो 1994 में दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला द्वारा प्रिटोरिया में एक ऐतिहासिक समारोह में राष्ट्रपति पद की जो शपथ थी वो ग्रहण की गई थी। और अगर 1999 की तरफ चलते हैं तो पेनिसिलिन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सर एडवर्ड इब्राहिम की मृत्यु आज ही के दिन हुई थी।
0: और 1993 में संतोष यादव एवरेस्ट पर लगातार दूसरी बार पहुंचने वाली पहली महिला पर्वतारोही बनी थी।
1: श्रोताओं, 2005 10 मई को लाहौर अमृतसर बस सेवा जो थी वो शुरू करने पर भारत और पाकिस्तान सहमत हुए थे। और 10 मई 2006 की अगर हम बात करते हैं तो 1987 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित ऑस्कर एश एरियाज ने दोबारा कोस्टारिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। इसरो के अध्यक्ष जी माधवन नायर और नासा के प्रशासक माइकल ग्रिफिन ने चंद्रमा पर भेजे जाने वाले भारत के चंद्रयान एक पर दो अमेरिकी वैज्ञानिक उपकरण लगाने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। भारत में सऊदी अरब के पहले राजदूत शेख मोहम्मद इब्त उमान अल मुलहिम का 105 वर्ष की आयु में निधन भी हुआ था।
0: और श्रोताओं, माहौल चल रहा है अभी थोड़ा थोड़ा जनगणना का, और बात करें 2000 की, तो दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में आस्था नाम की बच्ची के जन्म के साथ भारत की जनसंख्या 1 अरब के पार पहुंच गई थी।

श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं पंडित शिव कुमार शर्मा को, जिनकी की आज पुण्यतिथि है। पंडित शिव कुमार शर्मा और संतूर, इन्हें हम एक दूसरे का पर्याय भी कहें तो कुछ ज्यादा नहीं होगा। श्रोताओं, संतूर एक कश्मीरी लोकवाद्य होता है श्रोताओं, और पंडित जी का जन्म जम्मू में गायक पंडित उमा दत्त शर्मा के घर में हुआ, यानी कि संगीत का माहौल इन्हें शुरू से ही मिला। इनके पिता ने इन्हें तबला और गायन की शिक्षा तब से आरंभ कर दी थी जब ये मात्र 5 साल के थे। इनके पिता ने संतूर वाद्य पर बहुत ही ज्यादा शोध किया और कहीं न कहीं मन में दृढ़ निश्चय सा कर लिया कि शिव कुमार प्रथम भारतीय बने जो भारतीय शास्त्रीय संगीत को संतूर पर बजाए। तब उन्होंने 13 साल की आयु से ही संतूर बजाना आरंभ कर दिया और आगे चलकर इनके पिता का सपना पूरा हुआ और इन्होंने अपना पहला कार्यक्रम मुंबई में 1955 में दिया था और आगे जाकर इन्होंने फिल्मों में संगीत भी दिया। उन्हीं का संगीत दी हुई एक मूवी चांदनी का एक गाना आपको सुनवाते हैं और बात करेंगे इनके बारे में और भी।

शिव हरि। जी हाँ श्रोताओं, शिव कुमार शर्मा के साथ जब प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का नाम जुड़ा तो जोड़ी बन गई शिव हरि। और ये संगीतकार जोड़ी जो बनी, इसने कई सुपरहिट हिंदी फिल्में हमें दी, जैसे सिलसिला, लम्हे, चांदनी और डर। इनमें इन्होंने अपना संगीत दिया और ये वो संगीत है श्रोताओं जिसे जब भी हम सुनेंगे बिल्कुल तरोताज़ा लगेगा और कहीं ना कहीं दिल में वो सितार, वो बांसुरी की धुन जो है बजती रहेगी। उनकी कला और साधना के लिए उन्हें कई सर्वोच्च नागरिक और कला सम्मानों से नवाजा गया, जिनमें 1991 में पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1986 में और पद्म विभूषण से आपको सम्मानित किया गया वर्ष 2001 में। वर्ष 2002 में उन्होंने अपनी आत्मकथा जर्नी विद अ 100 स्ट्रिंग्स माई लाइफ इन म्यूजिक भी लिखी थी श्रोताओं। और 84 वर्ष की आयु में 10 मई 2022 को मुंबई में हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया और छोड़ गए अपने पीछे संगीत की एक अनमोल विरासत।

चाय की खुशबू, धीमी हवा, घर में हंसी की मीठी गूंज, परिवार संग बीते जो पल वही बन जाते जीवन पुंज। सपनों को फिर पंख मिले, थोड़ा खुद से हो संवाद, रविवार कहता है हमसे।

0: जी लो जीवन हर एक बार। जी अश्वताओं, जब भी रविवार आता है, जब भी मतलब वीकेंड, जब भी 7 दिन बाद जब हमें रविवार मिल जाता है 7वें दिन, तो फिर दिल बस यही कहता है कि आज तो अपने मन की सी बात हो जाए, जीवन को फिर से एक बार जी लिया जाए। और हमें पता है कि आपको भी रहता है इंतज़ार रविवार का, क्योंकि उस दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं मेहमान का रविवार। मेहमान का रविवार यानी कि एक ऐसी शख्सियत से हम बातचीत करते हैं फ़ोन के माध्यम से, जिन्होंने समाज के लिए भी बहुत कुछ किया है और जो अपने कार्य के प्रति पूरी तरह डेडिकेटेड हैं। साथ ही साथ कुछ ना कुछ रविवार को वो जो खास करते हैं, उसके बारे में हमारे दिल में भी इच्छा रहती है कि कैसा होगा इनका रविवार। श्रोताओं, मारवाड़ की धरती पर अनेक ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि समाज जागरण और शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन की अलख जगाई। और ऐसे ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी हैं आज के हमारे मेहमान बाबूराम गेंदवा जी, जिन्होंने अपने लगभग 4 दशक लंबे सेवा काल में शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और मानव समानता के मूल्यों को जीवन भर आत्मसात किया है। तो श्रोताओं, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं श्री बाबूराम गेंदवा जी का। आप उप प्राचार्य हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केतुकल्ला सेखाला जिला जोधपुर में। बाबूराम जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
1: जी, धन्यवाद।
0: सर, जैसा कि आपका प्रोफाइल हमने देखा और बहुत बड़ा जो एक कहते ना कि समय आपने इस क्षेत्र में निकाला है और अभी भी आप कार्यरत हैं, साथ ही साथ समाज के लिए आप बहुत कुछ करते हैं और बहुत कुछ सामाजिक बदलाव का माध्यम आप बनते हैं। भेदभाव, छुआछूत के खिलाफ भी आपने काफ़ी संघर्ष किया है, साथ ही साथ वैज्ञानिक सोच और जागरूकता के पक्षधर भी हैं आप। अपने जो विद्यार्थी हैं उनको भी आप यही सलाह देते हैं कि सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बातें जो हैं वो जीवन को सही मायने में जीना सिखाती हैं। तो इन बातों के साथ हम करते हैं शुरुआत आज के हमारे प्रोग्राम मेहमान के रविवार की। तो सर, सबसे पहले हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि कैसे अलग होता है आपका रविवार, यानी कैसे आप संडे स्पेंड करते हैं?
1: जी, अगर मैं घर में रहता हूँ
0: जी,
1: तो सुबह वही रूटीन रहता है 5 बजे उठने का और 1 घंटा शरीर को देते हैं
0: जी,
1: घूमना होता है लगभग 2 किलोमीटर
0: जी सर।
1: वैसे गांव में रहता हूँ इसलिए यहाँ रोड पार्क तो कुछ है नहीं, लेकिन घर के सामने ही 2 किलोमीटर के लगभग घूमता हूँ, उसके बाद कसरत और योग करता हूँ और
0: जी सर,
1: फिर ना धो के बैठ जाता हूँ पढ़ने।
0: अच्छा,
1: तो महापुरुषों को पढ़ता हूँ लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा तक, और या फिर लिखना शुरू कर देता हूँ। 3-4 किताबें मेरी चल रही है
0: जी,
1: तो वो लिखनी शुरू कर देता हूँ कभी किसी में 2 पेज कभी किसी में, ऐसे 4 किताबें चल रही है वर्तमान।
0: अच्छा, 4 किताबें आप पैरेलल लिख रहे हैं?
1: जी जी
0: जी सर। तो सुबह की शुरुआत आपकी मॉर्निंग वॉक के साथ हो गई, दैनिक कार्यक्रम आपने अपने करने के बाद में आप योग भी करते हैं शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए, और फिर आप कुछ रीडिंग यानी कुछ पढ़ते भी हैं और कुछ लिखते भी हैं
1: जी
0: जी सर। सर, ये तो कहीं ना कहीं आपके बिल्कुल व्यक्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल कभी तो कुछ करता होगा कि आज का संडे कुछ खाने पीने के लिए भी कुछ अलग हो जाए, या फिर कुछ लोगों से मिलने मिलाने की भी बात हो जाए। तो फिर क्या जो आपका नाश्ता वगैरह होता है उसके लिए आप कोई फरमाइश रखते हैं या कुछ अलग बात होती है, या वो डेली रूटीन जैसा ही आप करते हैं?
1: वैसे संडे महीने में 1-2 बार ही घर रह पाता हूँ, बाकी संडे को लगभग आउट ऑफ जोधपुर रहता हूँ किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या इस ढंग से।
0: जी सर।
1: तो वो हमेशा नया ही कुछ न कुछ मिलता रहता है, अलग अलग साथियों के अलग अलग एरिया में जाते हैं तो।
0: जी सर, जी सर।
1: और घर में तो महीने में 1 संडे ज्यादा से ज्यादा रह सकता हूँ।
0: अच्छा,
1: बाकी तो और संडे हमारा फिक्स है, सैटरडे को शाम को किसी जिले के लिए निकल जाते हैं, संडे को दिन भर का वहाँ का रूटीन रहता है, शाम को वापस वहाँ से बैठते हैं। मंडे को सुबह 4-5 बजे जोधपुर उतर के वापस 7 बजे तक स्कूल पहुँच जाता हूँ।
0: क्या बात है सर, मतलब आपका संडे संडे नहीं होकर ये भी पूरी तरह एक वर्किंग मोड पे ही चलता है।

0: वो ज्यादा होता है दूसरे
1: है
0: दिनों के बराबर।
1: ज्यादा होता है बाकी दिनों के, क्योंकि आपकी प्लानिंग्स उस तरह से होती हैं जो आप लोगों को विजिट करने होते हैं उन सबको संडे के लिए ही एक दिन मिलता है, तो
0: वो
1: उसमें आप
0: पहले से
1: अपना
0: तय होता है।
1: पहले से तय होता है। जी सर, श्रोताओं मैं आपको बताऊं, हमारे साथ हैं श्री बाबूराम जी गैनवा, आप उप प्राचार्य हैं। सर मॉर्निंग में ऐसे और क्या, जैसे आपने बताया ये तो बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई, क्योंकि आजकल के बच्चों में हम देखते हैं रीडिंग हैबिट नहीं होती है, पढ़ना पसंद नहीं करते, सिर्फ जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर ही वो अपने काम करते हैं। तो आपकी दोस्ती जो है किताबों से है ये हमें समझ में आ गया, लेकिन फिर भी कई ऐसे पुराने दोस्त भी होते हैं ज़िंदगी में जो काम के चलते आप लोग नहीं मिल पाते हैं, तो क्या जो एक संडे महीने का आपको मिलता है घर पर, उसमें आप फ्रेंड से मिलना मिलाना भी करते हैं?
0: मतलब फ्रेंड ज्यादातर उन लोगों के होते हैं जो कुछ खाने पीने के शौकीन होते हैं, और मैंने
1: जी
0: जिंदगी में कोई तरह का नशा नहीं किया है,
1: जी सर
0: इसलिए उस तरह के दोस्त तो मेरे नहीं है।
1: हाँ
0: लेकिन जो वैचारिक दोस्त हैं वो हम संडे को दिन में एक बार पक्का ही मिलते हैं, ज्यादा नहीं, 5-4 जो दोस्त हैं उनसे मिलकर आगे की हमारी जो योजनाएं होती है,
1: जी
0: हमारा टोटली एक ही काम रहता है,
1: हाँ
0: उसके अलावा कोई तरह का ऐसा नहीं।
1: काम नहीं रहता, तो आप वो भी हमारे श्रोताओं को बताएं कि आप मतलब जैसे आपका लिखने का कार्य रहता है, जो आप जाते हैं दूसरी जगहों पर अवेयरनेस के लिए, सामाजिक सुधार के लिए, तो वो हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि किस तरीके से आप जो 4-5 दोस्तों का आपका ग्रुप है उनके साथ में किस तरह से आप अपनी
0: आवाज
1: बातचीत
0: कट
1: करते
0: रही,
1: हैं। हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो,
0: आवाज कट रही है।
1: अब आपको आवाज आ रही है मेरी?
0: हाँ भाई,
1: जी, कोई बात नहीं, हम फिर से आपसे जुड़ते हैं। श्रोताओं आपको बताएं कि हमारे साथ हैं श्री बाबूराम जी गैनवा। सर मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि आपने कहा कि देखिए मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गई कि फ्रेंड्स जो होते हैं वो पार्टी और ये सब के लिए होते हैं, लेकिन दोस्त जो होते हैं एक सच्चा दोस्त जो होता है वो वैचारिक जो आदान प्रदान होता है उसके लिए आप मानते हैं। तो जो ये आपके 4-5 दोस्त होते हैं जिनसे आप संडे को मिलते हैं, तो इनसे किस तरह की बातचीत आपकी होती है, क्या कार्यों को आप एक रूटीन दे मतलब एक डायरेक्शन देते हैं, ये हमारे श्रोता जानना चाहते हैं।
0: इसमें एक तो विशेषकर हम जो भी समाज में नशावृत्ति और ये जो अंधविश्वास और फालतू की जो चीजें हैं
1: जी
0: उनके
1: सर
0: बारे में विचार विमर्श करते हैं, प्लस हमें अपने जीवन में किस ढंग से अपने आप को सुधारना है, उसके अनुरूप लोग देख के
1: जी सर
0: सुधरे, तो
1: जी
0: इस ढंग से हम बैठ के चर्चाएं करते हैं। और ज्यादातर साथी भी मैंने कहा वैसे ही है, तो
1: हाँ
0: वो
1: हाँ
0: सब शिक्षा और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं।
1: चर्चा करते हैं। जी सर,
0: जी जी
1: सर जैसे आपने कहा कि शिक्षा और सामाजिक मुद्दे, क्योंकि आप सोशल एक्टिविटीज़ में भी आपका बहुत रुझान है और बहुत कुछ समाज के लिए आपने किया भी है, तो और किस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ मतलब आप करते हैं, और आप जैसे शिक्षा के फील्ड से हैं तो यहाँ पर विद्यार्थी भी आपसे जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें
0: जी
1: किस
0: जी
1: तरह की बात आप सिखाते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, किस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ मतलब ऐसे क्या आप उनके साथ शामिल करते हैं बातचीत में कि बच्चे जो हैं इस इन बातों को समझ जाएं?
0: बिल्कुल, एक तो मेरा जो स्कूल का समय है उसमें मैंने पूरी नौकरी,
1: जी सर
0: अब ये 40वां चल रहा है, तो पूरी नौकरी मैंने आधा घंटा पहले पहुंचा हूँ स्कूल में।
1: जी
0: जब भी 7 का टाइम है तो 6:30 पहुंच रहा हूँ, और 7:30 का है तो 7 बजे पहुंचा हूँ।
1: क्या बात है
0: तो एक तो ये बात बच्चों को कहने की जरूरत नहीं है कि समय के पाबंद बनो, वो
1: जी
0: देख के अपने आप मोटिवेट होते हैं। और दूसरा है कि अनुशासन है वो देश को मान बनाता है,
1: जी
0: तो अनुशासन में हम खुद रहेंगे तो बच्चे भी उस ढंग से सीखते हैं, बाकी उनके लिए मोटिवेशनल है वो प्रार्थना सभा में हमेशा कुछ न कुछ कहते हैं, प्रेरक गीतों के माध्यम से
1: जी
0: या देश के जो जो महान हस्तियां हुई उनके बारे में ऐसे जानकारियां देके, और करियर गाइडेंस के बारे में भी समय समय पर देते रहते हैं।
1: जी सर, और जिस तरह से आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कि जैसे देखकर बच्चा सीखता है, तो जब समय से पहले शिक्षक वहाँ पे उपस्थित हैं तो बच्चा लेट हो ही नहीं सकता। साथ ही साथ अनुशासन जो एक बच्चे के जीवन की सभी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है अनुशासन, और वो भी जब सबको देखते हैं कि सब डिसिप्लिन में हैं तो उसे देखकर वो भी जो है अपने आप को अनुशासित कर लेते हैं, ऐसा हम समझते हैं।

0: जी
1: सर देखिए, बिल्कुल आपकी बात सारी मानी, लेकिन कहीं ना कहीं कई ऐसे गीत भी होते हैं जो हमारे दिल को छू जाते हैं।
0: जी
1: तो आप गीत सुनते हैं, चाहे धार्मिक हो या फिर मोटिवेशनल हो, किसी भी तरह का संगीत जो है वो हमें हमेशा एक मदद ही करता है, एक दवाई के तौर पर कार्य करता है, सुकून देता है। तो क्या आप संगीत सुनते हैं?
0: जब हम पढ़ते थे 80 के 80 में,
1: जी
0: 9वीं 10वीं में, तो उस समय एक नया गाना आया था मोरूभाई, और
1: अच्छा
0: वो सिर्फ रेडियो से ही आता था।
1: जी।
0: तो उस दिन शाम को वो 6 बजे आता था, तो जहाँ कहीं
1: हाँ
0: भी हॉस्टल में होते या आसपास, वहां से भाग के जिसके घर रेडियो होता वहां
1: हाँ
0: चले जाते,
1: जी
0: और
1: जी
0: कम से
1: जी
0: कम 100 लोग वहां इकट्ठे हो जाते उस गाने को सुनने के लिए।
1: अच्छा
0: तो ये तो उस समय की बात है,
1: जी।
0: लेकिन वर्तमान में जो है, एक जो भी मोटिवेशनल गाने हैं वो, या क्रांति गीत है, या सीख समझ वाले गाने जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं, बाकी गाने कभी भी नहीं सुने।
1: तो यानी कि आप रेडियो तो सुनते हैं सर, यहाँ एक बात तो मुझे समझ में आ गई।
0: रेडियो पहले तो सुनते थे,
1: जी
0: अब ये रेडियो को तो पहले टीवी खा गई, अब मोबाइल सबको खा गया।
1: तो सर है ना, मोबाइल पे भी जो रेडियो है वो सुना जा सकता
0: हाँ,
1: है,
0: वो
1: जो
0: सुनते
1: लिंक
0: हैं,
1: है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल
0: बीबीसी वगैरह उसी से सुनते हैं
1: जी सर।
0: आज भी।
1: हाँ तो आप समाचार जो है वो सुनते हैं रेडियो के माध्यम
0: बिल्कुल
1: से।
0: बिल्कुल
1: तो सर आपने कहा कि उस जमाने में जब एक ही गीत को सुनने के लिए 50 से 100 लोग इकट्ठे हो जाते थे, तो वो उस जमाने की बात थी, लेकिन आज की अगर पसंद की बात करूं तो कोई ना कोई गीत जरूर, चाहे मोटिवेशनल है, धार्मिक है, आपके दिल के करीब जरूर होगा। तो ऐसा
0: जी।
1: कोई गीत आप हमसे शेयर करें।
0: गीत एक हिंदी का है और एक मारवाड़ी का है, दोनों बता देता हूँ।
1: ठीक है सर, आप दोनों बता
0: एक
1: दीजिए।
0: है आँख है भरी भरी, ये
1: अच्छा
0: जो
1: अच्छा
0: गाना है ये
1: जी जी
0: मेरा
1: जी
0: सबसे फेवरेट है,
1: जी
0: और दूसरा मारवाड़ी वाला है, दोरों वाला देश जागरी।
1: क्या बात है। तो मतलब आपने हमें ओपन दोनों चॉइसेस दे दी हैं, और आपने ये कहा कि आंख है भरी भरी ये आपका सबसे ज्यादा फेवरेट है। तो
0: जी
1: बिल्कुल
0: जी
1: आपके सबसे ज्यादा फेवरेट गीत को ही हम अपना फेवरेट गीत भी बना लेते हैं, और आपकी पसंद का ये गीत हम भी सुनते हैं और हमारे श्रोताओं को भी सुनाते हैं। चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को अगर कुछ बात कहना चाहते हैं तो आप प्लीज इस माध्यम से कह सकते हैं।
0: जी जी मेरा तो यही कहना है
1: जी
0: कि जब भी हमें समय मिले, अब ये संडे का तो विशेष करके इसलिए पूछ रहे हैं कि ज्यादातर लोग संडे वाले दिन 9-10 बजे तक तो सोए रहते हैं कि आज संडे मूड है,
1: जी
0: और कई ऐसे होते हैं कि आज तो कुछ करना ही नहीं है, तो इस ढंग से होता है। लेकिन हमारा तो संडे है, वो दूसरे दिनों के बजाय ज्यादा कारगर होता है और ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है हमको।
1: जी सर
0: तो मैं तो सभी से यही कहूंगा कि अपना समय है उसका सदुपयोग करें, और जो समय की कदर करेगा समय उसी की कदर करेगा,
1: बिल्कुल सही।
0: जो समय के नहीं चलेगा उसकी समय भी कदर नहीं करेगा।
1: बिल्कुल सही आपने कहा बाबूराम जी, कि समय अगर हमारी कद्र, अगर हम समय की कद्र नहीं करेंगे तो समय भी हमारी कद्र नहीं करेगा। तो समय को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए, और आपने हमसे जो अपनी बातें शेयर की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो अपना फेवरेट गीत सुन बताया है, बिल्कुल आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत, और हमारे श्रोता भी उसे सुनेंगे, और आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत साधुवाद।

कैफी आजमी दोस्तों, उर्दू के जाने माने शायर जिनकी कैफियत अब भी बरकरार है। कैफी का असली नाम अख्तर हुसैन रिजवी था। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में छोटे से गांव मिजवा में 14 जनवरी 1919 में जन्मे। गांव के सीधे साधे माहौल में कविताएं पढ़ने का शौक लगा। भाइयों ने प्रोत्साहित किया तो लिखने लगे और 11 साल की उम्र में उन्होंने पहली गजल लिख डाली।

और फिर किशोर होते होते मुशायरे में भी वो शामिल होने लगे। फिल्मों में मौका बुजदिल 1951 में आई फिल्म से मिला और साथ साथ में स्वतंत्र लेखन भी चलता रहा। दोस्तों, कैफी की भावुक रोमांटिक शायरी, प्रभावी लेखनी से उनकी प्रगति के रास्ते तो खुलते ही गए और वे सिर्फ गीतकार ही नहीं बल्कि पटकथाकार के रूप में भी स्थापित हो गए। हीर रांझा कैफी की सिनेमाई कविता कही जा सकती है। सादगीपूर्ण व्यक्तित्व वाले कैफी बेहद ही हसमुख थे, बहुत कम ये लोग जानते हैं। और आज हम जिस फेमिनिज्म की बात करते हैं ना दोस्तों, उसे उन्होंने उस समय ही आंक लिया था और एक नज्म औरत के जरिए तमाम हमारी स्त्री शक्ति को उनके अस्तित्व से, आत्मसम्मान से रूबरू करवाया। उन्होंने कहा कि कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझमें शोले भी हैं अब अश्क फिशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं, अब तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे।

श्रोताओं, बांग्ला संगीत और फिल्मों में सफलता के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी अपनी कामयाबी का परचम लहराने वाले शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ पंकज कुमार मलिक, जी हाँ, 10 मई 1905 को इन्होंने जन्म लिया था। और ऐसे संगीतकार, ऐसे गायक जिनकी आवाज के जादू ने आज भी उनके लाखों प्रशंसकों को बांध रखा है।

श्रोताओं, ये जो गीत आपने सुना फिल्म थी डॉक्टर, और इसमें पंकज मलिक ने कई गाने खुद गाए थे जो काफी हिट भी हुए थे। पंकज मलिक, जी हाँ, बहुमुखी प्रतिभा के धनी। इनको संगीत और गायन के अलावा भी एक और क्षेत्र था जिसमें इन्होंने अपनी कुशलता दिखाई थी, और वो था अभिनय। हिंदी फिल्मों में डॉक्टर, आंधी, नर्तकी, ये इनकी काफी चर्चित फिल्में रही थी श्रोताओं, और अपनी विशिष्ट गायन शैली जो थी इनकी, उसकी बदौलत उन्होंने काफी लोगों को अपना प्रशंसक बनाया। हिंदी फिल्मों को का जो सर्वोच्च सम्मान होता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, उससे भी इन्हें नवाजा गया।

श्रोताओं, आज ही के दिन में दर्ज है एक और शख्सियत जिन्हें हम रामेश्वर नाथ काव के नाम से जानते हैं। आप भारत के महानतम जासूस और विदेशी खुफिया एजेंसी रॉ के संस्थापक थे। 10 मई 1918 को जन्मे काव ने जन्म 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के विभाजन और 1975 में सिक्किम के भारत विलय में अहम भूमिका निभाई थी। 1968 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत की पहली स्वतंत्र भारी खुफिया एजेंसी रॉ का प्रमुख बनाया था और उनके द्वारा चुने गए और प्रशिक्षित किए गए जो जासूस होते हैं उनके समूह को काउबॉयज के नाम से जाना जाता था।

तो 64.9 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सवेरे के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं बच्चों का पसंदीदा कार्यक्रम चुनमुन।

जय हिंद बच्चों। चुनमुन सुनने वाले सभी नन्हे मुन्ने श्रोताओं को नम्रता दवे का प्यार भरा नमस्कार। बच्चों कैसे हैं आप? भाई आज तो बहुत खुश होंगे क्योंकि आज बहुत अच्छा अच्छा दिन भी है और भाई रविवार तो है ही, और बच्चे इंतज़ार करते हैं अपनी फेवरेट दीदी का, है ना? तो बच्चों आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत प्यारी सी चंपक वन की कहानी और भी बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशंस भी। तो इन सब से पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गाने के साथ।

बच्चों, आज मातृ दिवस है और उसकी आपको ढेर सारी बधाइयाँ। बच्चों, आपको पता है माँ वह है जो बिना कहे हमारे मन की हर बात समझ जाती है, जो खुद तकलीफ में रहकर भी अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती है। उनकी एक मुस्कान के लिए माँ वो सब कुछ कर जाती है जो उसके बस में भी नहीं होता, लेकिन मन में बस एक विश्वास होता है कि मुझे करना है। माँ की गोद दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होती है। आप तो अब बड़े हो गए नन्हे मुन्ने बच्चों, लेकिन आपको पता है कि जब आप बहुत छोटे से थे ना, तब आपको गोदी इतनी अच्छी लगती थी कि आप बिना किसी सहारे के या उस गोदी के उस एहसास के आप रोना चालू हो जाते थे। उस समय माँ प्यार से आके आपको सहलाती थी और बोलती थी कि मैं यहीं हूँ, कहीं दूर नहीं गई हूँ। बच्चों, इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते थे, इसीलिए उन्होंने माँ बनाई। माँ सुबह की पहली प्रार्थना है, दिन की सबसे प्यारी मुस्कान है और जीवन की सबसे बड़ी ताकत है ना बच्चों? तो क्यों ना उनके प्यार को, त्याग को और उनकी अनगिनत दुआओं के लिए उनको धन्यवाद कहें। और चुनमुन सुनने वाले नन्हे मुन्ने जो प्यारे प्यारे श्रोता हैं ना, आज अपनी मम्मी को काम बिल्कुल नहीं करने देंगे ना बच्चों।

तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये गाना? अच्छा लगा ना भाई? माँ तो होती ही बहुत प्यारी है और बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। तो भाई, दीदी को भी तो बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा ना, तो इसीलिए दीदी लेकर आई है कहानी चंपकवन की। हाँ बच्चों, नन्ही दुनिया, बड़े बड़े सपने, और उन सपनों में बहुत अच्छी अच्छी बातें। लेकिन अक्सर क्या होता है बच्चों कि हम सोचते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं और समय निकल जाता है। हम ये सोचते हैं हम ये करेंगे, हम ज़रूर करेंगे, हम अपनी मम्मी की हेल्प ज़रूर करेंगे, हमने मना तो बिल्कुल भी नहीं किया, लेकिन अक्सर होता क्या है कि वो ही बात हम सोचते रह जाते हैं, है ना? तो चलिए देखते हैं कि चंपक वन में क्या चल रहा है। भाई, चंपक वन में गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। सभी जानवर बहुत खुश थे। बंदर मोंटू ने कहा, इस बार मैं पेड़ पर चढ़ने की नई तरकीब सीखूंगा। तो जो खरगोश चिंटू था वो बोला, मैं रोज सुबह दौड़ लगाऊंगा। तो तोता टिंकू बोला, मैं नए नए शब्द सीखूंगा। और सभी ने बहुत सारी योजनाएं बना ली। बच्चों, भाई आपकी भी तो गर्मी की छुट्टियां आने वाली हैं, कहानी बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन बच्चों, जैसे जैसे दिन बीतते गए, सब अपनी बातें भूलने लगे। यानी कि जिन जिन ने ये सोचा था कि मैं दौड़ूंगा, मैं पेड़ पे चढ़ूंगा, मैं नए नए शब्द सीखूंगा, मैं बहुत सारी योजनाएं बनाऊंगा, वो जैसे जैसे दिन गए ना बच्चों, वो सब भूलते चले गए। और चिंटू भी सुबह देर तक सोता रहता, दौड़ने नहीं जाता। टिंकू खेल कूद में इतना व्यस्त हो गया था कि उसने नए शब्द सीखना बंद कर दिए थे। देखते देखते बच्चों, छुट्टियां खत्म होने लगी थी। एक दिन बूढ़े कछुए दादाजी ने सबको बुलाया और पूछा, बच्चों बताओ, तुमने छुट्टियों में नया क्या सीखा? सभी जानवर चुप हो गए। उन्होंने कहा, ओहो, आज तो दादाजी ने पूछ लिया। और बच्चों, दादाजी से थोड़ा सा डर तो लगता ही है। सब सहम से गए। चिंटू बोला, अगर मैं रोज थोड़ा थोड़ा दौड़ता तो आज तेज बन जाता। भाई टिंकू भी दुखी था और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपना समय बेकार गंवा दिया। मोंटू बोला, काश मैंने समय पर अभ्यास शुरू किया होता तो मैं कुछ तो कर ही लेता। कछुए दादाजी मुस्कुराए और बोले, समय बहुत कीमती होता है, ये एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा सीखोगे तो बड़ा बदलाव आएगा। बच्चों को ये बात समझ में आ गई। तो भाई, चंपक वन के बच्चे बड़े जो सुस्त हो गए थे, उनको ये बात तो समझ में आ गई थी कि अगर समय की कद्र करनी चाहिए तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जो गर्मी की छुट्टियां होती हैं वो सिर्फ खेलने के लिए नहीं होती, अंदर सोने के लिए नहीं होती, घर के अंदर रहने के लिए नहीं होती, बल्कि कुछ नया सीखने के लिए भी होती है। जैसे आप रोज थोड़ा पढ़ सकते

हैं, कोई नई कला सीख सकते हैं और घर के छोटे छोटे कामों में मदद कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको पता है जो स्किल डेवलपमेंट होता है वो स्किल्स ये ही तो हैं, जो हमारे घर में खजाना है स्किल्स का। बस आपको ज़रूरत है अपनी नानी जी, अपने मामा जी, मामी जी, या फिर अपने आसपास में जो बड़े भैया हैं, दीदी हैं, उनसे ये पूछने की कि आपको अच्छा क्या आता है, और आप देखिए झटपट से वो स्किल डेवलप कर लेंगे। और जब छुट्टियां खुलेगी ना बच्चों, तो बड़े गर्व से आप बोल सकते हैं कि देखिए हमने छुट्टियों को बर्बाद नहीं किया है, हमने कुछ नया सीखा है। कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी ना? तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

तो बच्चों, आपको पता है कि जहाँ पे इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, दोपहर में निकलने का मन नहीं करता है ना? वहीं अगर एक पेड़ की छांव मिल जाती है तो क्या होता है, उसके नीचे जाके खड़े रहकर एक लंबी गहरी सांस लेने का मन करता है कि हाँ, यहाँ पर धूप नहीं आ रही है। अच्छा लगता है ना बच्चों? आपको पता है बच्चों, पेड़ वातावरण को ठंडा रखने में मदद करते हैं। इसीलिए तो जहाँ अधिक पेड़ होते हैं ना, वहाँ गर्मी कम लगती है और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, जिससे प्रदूषण कम होता है। तो बच्चों, आपको लग रहा होगा कि दीदी का इशारा है कि बहुत पेड़ लगाने चाहिए, है ना? बिल्कुल, गर्मी की छुट्टियां आने वाली हैं और ये काम तो आप शाम के टाइम में कभी भी कर सकते हैं। बच्चों, आज जो आप एक पौधा लगाएंगे, वो धीरे धीरे समय के साथ बड़ा होता जाएगा और जब आप उसकी देखभाल करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, उसको अपना दोस्त बनाएंगे ना, तो बहुत खुशी होगी क्योंकि वो आपके साथ साथ बड़ा होगा। जैसे ही वो एकदम अच्छा फल फूल जाएगा और उसमें से अगर फल भी निकलेंगे तो आपको लगेगा ये पौधा तो मैंने लगाया था, है ना बच्चों? विश्व पौधा दिवस 12 मई को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य भी लोगों लोगों के लिए जागरूकता फैलाने के लिए ही होता है बच्चों। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों, अगर अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे ना, तो पृथ्वी हरी भरी और सुरक्षित बनी रहेगी।

बच्चों, आपको पता है विश्व दूर संचार दिवस जो कि मनाया जाता है 17 मई को, और इस दिन की शुरुआत 1865 में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के स्थापना से हुई थी। दूर संचार का मतलब है बच्चों दूर बैठे लोगों तक जानकारी पहुंचाना, जैसे फोन, इंटरनेट, टीवी आदि के माध्यम से। पहले तो बच्चों चिट्ठियां भेजी जाती थी, चिट्ठियां यानी कि संदेशा चिट्ठियों के थ्रू जाते थे और बहुत बहुत दिन लग जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब तो भाई हम एक दूसरे का चेहरा भी देख सकते हैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू। अच्छा बच्चों, आपने ये सोचा है कि अगर मोबाइल बोल पाता तो क्या होता? भाई दीदी जहां तक सोच पा रही है वहां तक मोबाइल यही बोलता, छोड़ दो मुझको, छोड़ दो मुझको, अब तो पढ़ाई कर लो, कितना मोबाइल देखोगे, अब मुझे रेस्ट करने दो, मेरी बैटरी खत्म होती जा रही है ना। ऐसे आप बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं कि मोबाइल अगर बोलता तो क्या होता, अगर बैग बोलता तो क्या होता, इतना भार तुम मुझ पे लेके चलते हो, अब तो छोड़ो भाई, बैग की तरफ घर पर आके देख तो लिया करो, है ना। बहुत सारी मजेदार चीजें हैं, तो क्यों ना आप एक डायरी बनाएं और उस डायरी में ऐसी बहुत सारी चीजें लिखें, बच्चों बहुत मजा आएगा। जैसे किताबें अगर बात करती तो वो बड़ी गुस्सा होती, क्योंकि अक्सर कई बच्चों की आदत होती है कि किताब पढ़ते तो हैं लेकिन जगह पे वापस उनको नहीं रखते, वहीं पे कई बच्चे खुली किताब छोड़ देते हैं, कई वो खुली है तो खुली है, वो पढ़ी है तो पढ़ी है। तो बच्चों, ज्ञान का खजाना होती है किताब, अगर आप उसको इज्जत देंगे तो वो आपको बदले में बहुत कुछ देगी। तो बच्चों, आप हमेशा किताब का, ज्ञान का हमेशा आदर करें, करेंगे ना बच्चों।

तो बच्चों, अब वक्त हो चला है चुनमुन की टीम से रूबरू होने का। ट्रांसमीटर पर हैं पीके सेन, कैलाश चंद्र सोलंकी, कंट्रोल रूम में पारस पुरी गोस्वामी, प्रोडक्शन रहा सफलता चारण का, और ऑन ड्यूटी अनाउंसर हैं शुभम, और प्रेजेंटर मैं यानी कि नम्रता दवे। अगले हफ्ते बच्चों फिर होगी मुलाकात चुनमुन के नए कार्यक्रम के साथ।

मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सवेरे के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुना रहे हैं ये पहला नगमा सोनाली और रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ों में।

0: लीजिए सुनिए जावेद अख्तर का लिखा ये गीत अलका याग्निक की आवाज में।
1: एक समय था कि फिजाओं में संगीत घुला था, हवाएं घनेरे पेड़ों में छुप के अपनी रागनियां सुनाती थीं, फूल झूमते थे, पत्तियां सरसराती थीं, नदियां झरने पंछी सभी तो गुनगुना रहे थे। अब

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत की आखिरी पेशकश सोनू निगम की आवाज़ में, बोल है फैज़ अनवर के, धुन दी है साजिद वाजिद ने।

मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सवेरे के 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: ओके सैलरी, नहीं झुमके ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके।
1: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या,
1: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: आप

0: ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे बॉय।
0: दिखा? हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
2: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
4: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: आई नो ना।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

ये आकाशवाणी का सूर्य नगरी चैनल है, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कहते हैं जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, तब भी एक माँ ऐसी होती है जो चुपचाप आपके सिर पर हाथ रखकर कहती है सब ठीक हो जाएगा। माँ की दुआएं किसी मंदिर की घंटियों से कम नहीं होती। उसकी ममता में वो ताकत होती है जो टूटे हुए इंसान को फिर से जीना सिखा दे।

माँ की गोद दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होती है, जहाँ ना कोई डर होता है ना कोई शिकायत। बस होता है तो एक अनकहा सुकून, जहाँ चाहे कितने भी बड़े हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, माँ के लिए हमेशा वही बच्चे रहेंगे जो कभी उसकी उंगली पकड़ कर चला करते थे।

माँ सिर्फ एक शब्द नहीं है, पूरी दुनिया है। दोस्तों, माँ वो किताब है जिसमें प्यार लिखा होता है। माँ वो दुआ है जो बिना मांगे भी असर कर जाती है। और माँ वो छाव है जहाँ ज़िंदगी की हर थकान मिट जाती है।

आकाश में चमकते चांद से लेकर धरती की ठंडी छांव तक, अगर इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कोई एहसास है तो वो है माँ। माँ जो खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को खिलाती है, जो हमारे दर्द को बिना कहे समझ जाती है, जो हमारी हर हार में हिम्मत

और अब इस भावनाओं से भरे सफर को यहीं विराम देने का समय आ गया है। दोस्तों, माँ को सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन प्यार और सम्मान दीजिए, क्योंकि जब तक माँ साथ होती है तो ज़िंदगी की हर मुश्किल छोटी लगने लगती है। आज घर पहुंचकर बस एक बार अपनी माँ से ज़रूर कहिए, माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है, प्रस्तुत है लोक संगीत।

श्रोताओं, ये थी लोक संगीत की आखिरी पेशकश। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल। आइए आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत।

0: आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। कुछ थोड़ी ही देर में होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें जयंती समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के संस्थापक सी जोसेफ विजय ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। श्री विजय की टीवी के पार्टी को 234 सदस्यों वाली विधानसभा में 108 सीटें मिली हैं और उन्होंने 120 विधायकों का समर्थन जुटाया है। श्री विजय 1967 के बाद राज्य के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो किसी भी द्रविड़ पार्टी से नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक रूप से दी जाने वाली राशियों के भुगतान में चूक कम हो सकेगी। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार समावेशी और समान शिक्षा के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। झुंझुनू के बगड़ कस्बे में करीब 150 साल पुरानी फतेह सागर और भूतनाथ तालाब अब नए स्वरूप में नजर आएंगे। केंद्र सरकार की अमृत 2.0 योजना के तहत करीब 1,38,00,000 रुपए की लागत से दोनों तालाबों के कायाकल्प का काम शुरू हो गया है। परियोजना के तहत तालाबों के घाटों और सीढ़ियों का पुनरुद्धार किया जाएगा। तालाबों के जीर्णोद्धार से स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश भर में आज मातृत्व दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। ये दिन माताओं के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मातृत्व दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मां सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि ममता, त्याग और समर्पण की सबसे पवित्र भावना है। उन्होंने कहा कि मां हमारे जीवन की पहली गुरु होती है जो हमें संस्कार, साहस और सही मार्ग पर चलना सिखाती है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर तेज गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकांश जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 45.7 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर में रहा। जैसलमेर में 45, फलौदी में 44.8, जोधपुर में 43.9, चित्तौड़गढ़ में 43.8 और बीकानेर में 42.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। विभाग ने आज जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों तक पश्चिमी जिलों में तेज गर्मी और लू चलने की संभावना को देखते हुए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वी जिलों में इसके विपरीत आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत प्रोग्राम सुन वाला सगला किसान भाई ने दिनेश राणे जरा घने मानसू राम राम और नमस्कार सा। किसान भाया खेती बाड़ी का काम काज आपा करे जा, साथे साथे कई किसान भाई सब्जियारी पैदावार भी ले रखी है। जो बात करा अबार भिंडी री पैदावार भी किसान भाई ले रखी है। पहला फरवरी मार्च महीने बुआई करी वह भिंडी हमार खोडा में उबी है और हमें किसान भाई भिंडी री पैदावार लेवेला। भिंडी रे फल रो प्रयोग खास तौर से सब्जी रूप में करीजिया करे। इन महीने विटामिन खनिज लवण आयोडीन होया करे। इनकी जड़ और तना रो उपयोग गुड़ है खांड ने साफ करने वास्ते करिया करे। फला और रेशेदार डंठला रो उपयोग कागज और कपड़ा उद्योग रे महीने भी होया करे। किसान भाइया आज जानकारी आप ले रिया हाँ की भिंडी री खेती रे महीने कीट प्रबंधन किन तरह से आप कर सका। भिंडी रे महीने खास तौर से जो कीट लागिया करे जिन महीने हरो तेलो है मोइलो है सफेद मक्खी है ए कीट पौधा री पत्तिया और कोमल शाकाहारों जो रस है वो चूस पर और पौधा ने बहुत कमजोर कर दिया करे जिनसे उत्पादन माते विपरीत प्रभाव पड़िया करे। ए कीट व्याधि ने फैलावने में भी बहुत सहायक हुआ करे। हरा तेला मोइला सफेद मक्खी रे नियंत्रण वास्ते

डाइमिथोएट 30 ईसी या मिथाइल डिमेटोन 25 ईसी या मेलाथियान 50 ईसी रो 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी री दरसू छिड़काव करनो चाहिए। भिंडी री खेती रे महीने फली छेदक भी कीट लाग जाया करे। इन कीट री लट काफी हानि भिंडी री फसल ने पहुंचाया करे। ए फला रे महीने छेद कर परा और अंदर बढ़ जावे, अंदरू खा परार नुकसान पहुंचाया करे, जिनसु फला रो जिको विपणन और जिकी उनकी गुणवत्ता है आ कम हो जाया करे। कीट सु बचाव रे वास्ते फूल आउना रे पछे क्यूनोलफास 25 ईसी 2.0 मिलीलीटर या कार्बोरिल 50 WP प्रति 4 ग्राम या फेनवेल रेट 20 ईसी या साइपर मेथ्रीन 25 ईसी आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी रे हिसाब से छिड़काव किसान भाई ने करनो चाहिए। और मान लो जरूरत पड़े तो इनने 10 से लेकर 15 दिन रे अंतरू फाचो दोहरा लेनो चाहिए। रसायन छिड़काव और फल तोड़ना महीने कम से कम 5 से 7 दिन रो अंतर किसान भाई ने रखना चाहिए। पहलो छिड़काव क्यूनोलफास 25 ईसी 1000 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर दर्शु और दूजो छिड़काव बेसिले थुरिनजेंसिस कष्ट की रसाते मिथोइल 40 SP 1000 मिलीलीटर प्लस 625 ग्राम प्रति हेक्टर फूल आने पछे तीसरो छिड़काव 15 दिन रे अंतराल माथे दूसरो छिड़काव वाली दवाई दोरा परार किसान भाई प्रयोग कर सके। किसान भाई आपने जानकारी भले देवा, हमें सुनाओ आपने बढ़िया सो और की तड़ लो।

किसान भाई आपा जानकारी ले रहा है कि भिंडी की खेती में मैंने कीट प्रबंधन किन तरह से आपा कर सका। छाछिया भी हो जावे इंडी रोकथाम वास्ते पतिया माते सफेद चूर्णी दबा दिखाई दिया करे। ज्यादा रोग लाग जावे रोग ग्रसित पतिया पीली पड़परी जड़ जाया करे। रोकथाम वास्ते केराथेन एलसी या कलेक्शन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से 10 से 15 दिन रे अंतराल माते छिड़काव करना चाहिए। एक और जड़ गलन की भी समस्या हो जाया करे। इन रोग से पौधा की जड़ा है सड़ जाया करे। रोकथाम वास्ते कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज री दर से उपचार कर परा अर्ब होनो चाहिए। पित्त शिरा मोजेक इन रोग रे प्रकोप से पतिया और फल पीला पड़ जाया करे। पतिया चितकबरी हुपरी प्याले नुमा सकली हो जाया करे जिनसु पैदावार में कमी आ जाया करे। इन रोग रो संचार सफेद मक्खी नामक कीट से या करे। इन नियंत्रण वास्ते फूल आणु पहला और फूल आने रे पछे मेलाथियान 50 cc 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी रे हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। और मान लो जरूरत पड़े छिड़काव 10 दिन रे अंतराल माते फाचो दोहरा लेना चाहिए। किसान भाइयों आ ही जानकारी के भाई भिंडी की खेती में कीट प्रबंधन आपा किन तरह से कर सका। कृषि जगत प्रोग्राम रो बगत पूरा वेरियो है। दिनेश राणे जाने सीख दिराओ। राम राम।

आप सुन रहे थे कृषि जगत। हम आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी वाटिका।

0: नारीवाटिका सुनने वाले सभी सखियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सखियों, आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हैं आपकी दो प्यारी प्यारी रेडियो सखियां। मैं हूं बसंत कंवर
1: और मैं हूं ज्योति पुरोहित।
0: तो स्वीकार कीजिए हम दोनों का प्यार भरा
1: नमस्कार। इस कार्यक्रम की थीम को तैयार किया है सफलता चारण ने।

0: भरा संसार, माँ की ममता सागर जैसी प्यार भरा संसार, उसके बिना सूना लगता है जीवन का घर द्वार। हर दुख में जो साथ निभाए बनकर मीठी छाँव, हर दुख में जो साथ निभाए बनकर मीठी छाँव, उसके कदमों में ही बसता है खुशियों वाला गांव, है ना?
1: बिल्कुल बसंत जी, आपने एकदम सही कहा। वाकई में माँ एक शब्द नहीं, एक बहुत ही प्यारा सा एहसास है जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी इमोशन, सबसे बड़ी भावना है। कहते हैं कि भगवान हर जगह तो पहुंच नहीं सकता, लेकिन इसीलिए माँ को बनाया। माँ का ये प्यार बहुत ही निस्वार्थ और पवित्र होता है, जो हमें जीवन की हर कठिनाई में लड़ने की शक्ति देता है। वैसे तो यूं कहें कि हर दिन जो है वो माँ का आभार व्यक्त करने के लिए ही होता है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: लेकिन फिर भी आज ही के दिन हम माँ के सम्मान के लिए हम मदर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं और उन्हें ये महसूस करवाते हैं कि वो हमारे लिए कितनी खास है।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल सखियों, आज की नारी वाटिका में आज हम बात करेंगे माँ के उस अलौकिक प्यार की, बात करेंगे उन महिलाओं की जिन्होंने माँ जैसा किरदार निभाया, और बात करेंगे उस ममता की जो हर रिश्ते को खूबसूरत बनाती है।

0: सखियाँ सुन रही है अपना पसंदीदा कार्यक्रम नारी वाटिका। सखियों, आज मदर्स डे है और हम बात कर रहे हैं माँ की। माँ एक ऐसा शब्द है जिसे बोलते ही दिल में अपनापन, सुकून और प्यार का एहसास होने लगता है। जिसकी गोद में सुकून है, जिसकी दुआओं में ताकत है और जिसकी मुस्कान में पूरी दुनिया बसती है। सच कहूँ तो माँ का रिश्ता दुनिया का सबसे निस्वार्थ रिश्ता होता है। बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाने वाली माँ बड़े होने पर भी हर कदम पर हमारी चिंता करती रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, पर उनके लिए तो हम हमेशा बच्चे ही रहते हैं।
1: बिल्कुल
0: हम बाहर से कितने भी मजबूत क्यों न बन जाएं, पर माँ हमारी आवाज़ सुनकर हमारी जो परेशानी होती है उसको पहचान लेती है ना?
1: बिल्कुल बसंत जी सही कहा। और शायद यही वजह है कि माँ को सबसे खूबसूरत एहसास कहा जाता है। हम कितना भी मुस्कुरा लें, उसके पीछे जो छुपी हुई जो हमारी उदासी होती है, हमारी जो परेशानी होती है, उसे वो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेती है और उसका सोल्यूशन भी वो निकाल लेती है।
0: बिल्कुल
1: मतलब यूं कहें कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल से मुश्किल समय आए और उस वक्त यदि माँ हमारे साथ में है तो, और वो हमें ये सिर्फ इतना सा बोले कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आई थिंक ये ना मतलब वो मैजिक स्टिक का काम करती है
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ना। इतना सुनते ही शायद मेरे हिसाब से सभी के साथ में ऐसा होता होगा कि वो 90% तो खुद को बहुत हल्का फील कर लेते हैं कि नहीं
0: बिल्कुल
1: यार अब सब कुछ अच्छा होगा, ऑल इज वेल ऑल इज वेल
0: बिल्कुल
1: ऑल इज वेल। बिल्कुल, तो सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। बिल्कुल माँ का साथ जो है वो हमें ये एहसास कराता है कि वक्त कितना भी खराब हो, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन माँ की दुआएं जब हमारे साथ में होती हैं तो हमारी जिंदगी में उम्मीद कभी भी खत्म नहीं हो सकती।
0: बिल्कुल।

0: बोल नहीं होता और उसकी आंचल से बड़ा कोई आसमान नहीं होता। वो खुद दर्द में रहकर भी मुस्कुराती रहती है क्योंकि बच्चों से बढ़कर उसके लिए कोई अरमान नहीं होता। वाकई में सखियों, माँ तो वो रोशनी है जो खुद चलकर भी अपने बच्चों की ज़िंदगी को रोशन करती है, क्योंकि माँ की दुनिया अपने बच्चों से ही शुरू होती है और अपने बच्चों पर ही ख़त्म होती है।
1: बिल्कुल सही कहा ज्योति। एक माँ अपने बच्चों के लिए हर कठिनाई को सह लेती है,
0: जी
1: कभी अपनी इच्छाएं छोड़ देती है तो कभी अपने सपनों का बलिदान कर देती है, लेकिन अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखकर वो अपना सारा दर्द भूल जाती है। तुम्हें याद है जब हम बचपन में गिर जाते थे तो सबसे पहले माँ ही दौड़कर आती थी,
0: बिल्कुल सही कहा। वाकई में वो कहीं पे भी होती, किचन में खाना बना रही होती, अपने रोने की आवाज सुनकर सबसे, मैं ये नहीं कह रही कि किसी को दर्द नहीं होता, बाकी सबको भी दर्द होता है नो डाउट, बट माँ सबसे पहले दौड़ के आती, कुछ भी काम कर रही हो छोड़ के आती, तुम्हें
1: बिल्कुल
0: लगी तो नहीं, कहीं
1: हाँ
0: ज्यादा चोट तो नहीं आई। उसे वो हमें डांटती भी थी और उन्हें हमारी परवाह भी थी।
1: बिल्कुल। इसके साथ ही कभी हम बीमार हो जाते थे तो उनकी रातों की नींद उड़ जाती थी, हमारे एग्जाम्स होते थे तो वो भी हमारे साथ साथ पूरी रात जगती रहती, हमारा ख्याल रखती, कभी हमें दूध चाय और कभी कुछ खाने पीने के लिए लाकर देती थी ताकि हमारा मन पढ़ाई में लगा रहे। और हमारा, और सबसे बड़ी बात, जब हमारा रिजल्ट आता था तो वो इतनी ज़्यादा खुश होती थी जैसे कि उनका रिजल्ट आया है और उन्होंने जीत हासिल कर ली
0: ये तो बात
1: है।
0: सही है। हम बच्चों की जब परीक्षाएं होती है तो बच्चों की नहीं होती, सही मायने में माँ की परीक्षा होती है वो।
1: बिल्कुल।

0: सखियों, माँ केवल हमें जन्म ही नहीं देती बल्कि हमें संस्कारित करके जीना भी सिखाती है। वो हमारी पहली शिक्षक, पहली दोस्त और सबसे बड़ी मार्गदर्शक भी होती है। आज के समय में जब जीवन की भागदौड़ बहुत अधिक बढ़ गई है और उनके साथ मतलब हम कई बार ऐसा होता है ना कि काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनके साथ हम वक्त बिता ही नहीं पाते हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि माँ का प्यार जो है वो अनमोल है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और उनके साथ जो थोड़ा सा वक्त बिताया गया है वो उनके लिए सबसे बड़ा उपहार है। उन्हें कोई महंगे तोहफों की या कोई वैसी ज़रूरत नहीं होती है, वो
1: जी,
0: बस अपने बच्चों के साथ अपनेपन और सम्मान को जीना
1: बस
0: चाहती
1: उसी की
0: है ना।
1: वो उसको ललक रहती है। और वाकई में बसंत जी, माँ जो होती है वो खुद भूखी रह सकती है लेकिन अपने बच्चों को कभी भी भूखा नहीं रहने, खुद परेशानी में रहेगी लेकिन उसे कभी भी परेशानी की चादर ओढ़ने नहीं देती। वो
0: बिल्कुल
1: हमारी हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखती, बदले में सिर्फ वो चाहती क्या है, वो चाहती है सिर्फ थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा रिस्पेक्ट और थोड़ा सा समय। 24 घंटे में से कुछ समय आप उसके पास बैठें और उसकी मन की बात को ध्यान से सुने, बस इतना ही वो चाहती है।
0: बिल्कुल।
1: और
0: तो सखियो, जब भी आपको अवसर मिले तो माँ के साथ समय जरूर बिताएं, क्योंकि वक्त बीत जाने के बाद अक्सर वही पल हमें सबसे ज्यादा याद आते हैं।

0: सखियो, एक औरत सिर्फ माँ ही नहीं होती, वो बेटी बनकर घर में ढेर सारी खुशियाँ लाती है, बहन बनकर दोस्ती भी निभाती है, तो पत्नी बनकर साथ देती है, और माँ बनकर पूरी दुनिया को संभालती है। और हर महिला अपने जीवन में न जाने कितने सारे किरदार निभाती है, लेकिन बसंत जी, पता है, सबसे खूबसूरत किरदार होता है।
1: माँ का
0: बिल्कुल, ममता का कोई चेहरा नहीं होता, माँ सिर्फ रिश्तों से नहीं होती, जहाँ सच्चा अपनापन मिले वही माँ का प्यारा एहसास होता
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल ज्योति जी, बिल्कुल सही कहा है। माँ केवल जन्म देने वाली ही नहीं होती है, कभी कभी दादी की ममता में माँ दिखाई देती है, तो कभी बहन की चिंता में, कभी हमारी टीचर की सीख में माँ दिखाई देती है, तो कभी एक मित्र के स्नेह में। जीवन के हर मोड़ पर महिलाएं किसी न किसी रूप में हमारा हाथ थामे रहती हैं। गिरने पर वो हमें संभालती हैं, हारने पर हमें हौसला देती है, प्रेरित करती है और आगे बढ़ने का साहस देती है। महिलाएं हर रूप में परिवार और समाज की दशा और दिशा दोनों को संवारने का कार्य करती है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: महिलाओं का धैर्य, समर्पण और संघर्ष समाज को मजबूत आधार प्रदान करता है, और जब वही महिला एक माँ के रूप में होती है तो उसका त्याग और भी महान बन जाता है।

0: विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है।
1: कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है?
0: इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना।
2: टेंशन क्यों, मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: सखियों, इस वक्त आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम नारी वाटिका। और आज की नारी वाटिका में हम बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं माँ के लिए। बसंत जी, हमारे देश में कई ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं संभाला, नज़र डालें तो पता चलता है कि समाज, देश और हजारों लोगों के लिए माँ जैसा प्यार उन्होंने दिया, उनको
1: बिल्कुल।
0: संरक्षण दिया, प्रेरणा दी। हम बात करें मदर टेरेसा की,
1: जी
0: जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, बीमारों और अनाथ बच्चा की सेवा में
1: हाँ
0: लगा दिया।
1: बिल्कुल।
0: बिल्कुल। और कोलकाता की गलियों में जिन लोगों का मतलब कोई नहीं था, बेसहारा थे, वो सड़क पर पड़े थे, वहाँ पर मदर टेरेसा जो है उनके लिए सहारा बनी। उन्होंने कहा था कि अगर आपसे कई ज़्यादा लोगों की या 100 लोगों की यदि सेवा नहीं हो सकती, मदद नहीं हो सकती, तो कोई बात नहीं, आप किसी एक की तो मदद कीजिए। सच में उन्होंने जन्म भले किसी को ना दिया हो, लेकिन हजारों लोगों के जीने की वजह उन्होंने जरूर दी।
1: बिल्कुल ज्योति, अगर हम वैसे ही बात करें तो एक और महिला है सावित्रीबाई फुले, उन्हें हम कैसे बोल सकते हैं ना।
0: बिल्कुल।
1: वो भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी, लड़कियों की शिक्षा के लिए संघर्ष किया, खूब आलोचनाएं भी उन्होंने सुनी पर हार नहीं मानी। एक माँ की तरह हजारों बेटियों को शिक्षा देकर आत्मविश्वास के साथ उनका भविष्य संवारा। लोग कई बार उन पर कीचड़ भी फेंकते थे, है
0: जी,
1: ना,
0: तो ऐसे
1: लेकिन
0: में
1: वो
0: वो मतलब
1: एक
0: प्रिपेयर होके जाती थी,
1: बिल्कुल
0: मेंटल प्रिपेयर
1: वो
0: होती थी।
1: अलग एक अपने बैग में साड़ी रख के जाती थी कि ठीक है ऐसा कोई सिचुएशन होगी तो वो साड़ी अलग लेके जाती थी, और फिर भी वो स्कूल जाती, पढ़ाने जाती, और कभी मतलब रुकी नहीं, कभी हार नहीं मानी, आगे बढ़ती चली गई और बेटियों को उन्होंने शिक्षित किया। और आज देखो समाज में महिलाओं की शिक्षा की जो लेवल है वो उन्हीं की वजह से आगे बढ़ पाया है ना।

0: माँ, अनाथ बच्चों की माँ बनी सिंधुताई। सैकड़ों बच्चों को उन्होंने अपनाया, घर जैसा प्यार दिया, शिक्षा दी। खूब सारी उन्होंने कठिनाइयों को झेला, लेकिन उन्होंने दूसरों के आंसुओं को हमेशा पोंछने का काम किया। खुद का दर्द भूलकर हजारों बच्चों को मुस्कान दी। सच में वो माँ कहलाने की हकदार है।
1: बिल्कुल। और हम यदि बात करें सुधा मूर्ति जी की, वो एक ऐसी प्रेरणादायक महिला है जिन्होंने अपनी सादगी, सेवा और शिक्षा के माध्यम से समाज में एक विशेष पहचान बनाई है। वे एक प्रसिद्ध लेखिका होने के साथ साथ समाज सेवा के कार्यों में भी हमेशा आगे रहती हैं। उनकी कहानियाँ जीवन के सरल मूल्यों, इंसानियत और संस्कारों का संदेश देती हैं। उन्होंने अपने कार्यों से ये साबित किया है कि सच्ची महानता विनम्रता और केवल अच्छे कर्मों में होती है। वे लाखों लोगों, विशेषकर युवाओं और महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गरीब बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए उन्होंने खूब काम किया है। वे बताती हैं कि सफलता के साथ साथ विनम्रता और संवेदनशीलता भी बहुत ज़रूरी है।

0: सखियों, इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्ध का नहीं होता, ये उन महिलाओं का भी होता है जिन्होंने अपने साहस, त्याग और ममता से खूब सारी पीढ़ियों को सजाया और संवारा भी है। बात करें चाहे पन्ना धाई का बलिदान हो, चाहे जीजाबाई के संस्कार हो, या सिंधुताई की ममता, मदर टेरेसा का हजारों लोगों को जीने की वजह बनना, वाकई में इन सभी महिलाओं ने साबित कर दिखाया कि माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक बहुत ही अच्छी सी भावना है जो पूरी तरीके से पवित्र है।
1: बिल्कुल ज्योति, माँ की ममता सिर्फ रिश्तों में नहीं होती, वो तो दिल में राज करती है। उसके आंचल में थका हुआ हर सपना सुकून पा जाता है। उसकी गोद में बैठकर हर दर्द कहीं खो जाता है। वो घर की रौनक भी है और जीवन की सबसे प्यारी आवाज़ भी, जिसके बिना हर खुशी अधूरी और हर त्योहार सूना सा लगता है।

0: सखियो, हम बात कर रहे हैं माँ की, लेकिन समय के साथ साथ माँ की भूमिकाएं भी बदल रही हैं। आज एक माँ घर की चौखट तक सीमित नहीं रही है, वो दफ्तर, स्कूल, अस्पताल और प्रत्येक क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना रही है। माँ चाहे घर संभाले या बाहर जाकर काम करे, उसकी दुनिया हमेशा अपने परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि परिस्थितियाँ और जिम्मेदारियाँ उसके सोचने का तरीका बदल देती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा बसंत जी आपने। वाकई में दोनों की दुनिया और संघर्ष तो अलग अलग होते हैं, लेकिन उन दोनों का मोटिव जो है, उद्देश्य जो है, वो एक ही रहता है कि अपने बच्चों को बेहतरीन परवरिश दें और खूब सारा उन्हें प्यार दें। घर पर रहने वाली माँ बच्चों की हर गतिविधि को अच्छे से देख सकती है, गेम्स हो चाहे डॉक्टर विजिट हो, वो खुद पास में मौजूद रह के सब काम करवाती है। तो जो कामकाजी महिला हैं, बाहर जाती हैं, ऑफिस जाती हैं, तो वो ऑफिस और बच्चों के बीच में बटी भी रहती है। तो उसे वीकेंड का टाइम मिलता है या सुबह शाम का जो समय मिलता है, उसको वो थोड़ा सा क्वालिटी टाइम बनाने की कोशिश कर लेती
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल, आप जब
1: और
0: बात कर रहे हैं कि भाई उसको जिम्मेदारियां जो होती हैं उनके बीच संतुलन बनाना पड़ता है, तो सुबह घर का काम और दिन भर ऑफिस का काम,
1: जी
0: और माँ अक्सर अपने बच्चों को, मतलब वो उन चुनौतियों से सामना करने की शिक्षा देती है, क्योंकि वो खुद नित नई चुनौतियां सीखती हैं,
1: जी जी
0: है ना?
1: बिल्कुल। और कामकाजी महिलाएं जो होती हैं, वो वित्तीय रूप से भी बहुत स्वतंत्र होती हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है और सभी फैसलों में वो खूब भागीदार भी
0: बिल्कुल ज्योति
1: बनती
0: जी,
1: हैं।
0: आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी टिक टिक करके इशारा कर रही है कि कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है। तो सखियों, अभी आप सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम नारी वाटिका। इस कार्यक्रम का संयोजन किया सफलता चारण ने, कंसोल के माध्यम से प्यारे गीतों को आप तक पहुँचाया पद्मिनी बोहरा ने, ट्रांसमीटर्स पर हमारे सहयोगी विक्रम सिंह भाटी और कैलाश चंद्र सोलंकी, और कंट्रोल रूम से हमारा सहयोग किया गजेंद्र सिंह जालसू ने। तो अब अपनी रेडियो सखियों बसंत कंवर और
1: ज्योति पुरोहित को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी वाटिका, आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। दिन के 2:15 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
3: साथ में विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया, सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्म

0: आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय तमिलनाटर कड़मो மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: ஸ்ரீ விஜய் கே சாத் 9 மந்திரியும் நே பி சபத் லி ஹே. இன்மே கே ஜி அருண்ராஜ், ஆதவ் அர்ஜுன், என் ஆனந்த், செல்வி எஸ் கீர்த்தானா ஆர் டாக்டர் டி கே பிரபு சாமில் ஹே. இஸ் அவசர் பர் லோக்சபா மே விபக்ஷ் கே நேதா ராகுல் காந்தி ஆர் தமிழ் ஃபில்ம் உத்யோக் கி கை ஹஸ்தியா மௌஜூத் தி. முக்கியமந்திரி சி ஜோசப் விஜய் நே फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री सरमा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
3: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा

0: के आठ विधायकों ने जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद एजीपी और बीपीएफ के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
2: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुद्दुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त दो दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर
3: संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने
1: एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडी विंस से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था, वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी

0: ये अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में खतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की टुकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद यह जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज़ पर। इस समय दिन के 3 बजे हैं। हमारी पहली प्रसारण सभा अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्स पर। हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है। इस सभा में आइए सबसे पहले सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युवा।

0: इस प्यारे से दिन की प्यारी सी शाम, और उस प्यारी सी शाम में आज के इस खास अवसर पे हम लेकर आ चुके हैं आप ही का कार्यक्रम युववाणी, जहां पर आज होने वाली है ढेर सारी बातें। संडे का दिन हो और आपसे बातें ना हो, ऐसा होना तो पॉसिबल है ही नहीं। हाल फिलहाल आपके साथ जुड़ी है दो प्यारी आवाजें, मेरा नाम है रिद्धि।
1: और दोस्तों, मैं हूँ विकास। जैसे कि रिद्धि ने बताया कि आज का जो दिन है वो काफ़ी स्पेशल भी होने वाला है, क्योंकि आज है रिद्धि संडे। और साथ ही साथ सबसे खास बात ये है कि मई महीने के हर दूसरे संडे को जो है वो मदर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो
0: जी हाँ विकास, और आज जितनी भी महिलाएं, जितनी भी माँ ये हमारा
1: बिल्कुल
0: शो सुन रही है, हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार भरा हैप्पी मदर्स डे। और जैसा कि विकास, आज हम बात करने वाले हैं संडे स्पेशल में, आज बात होगी इसी विषय पर क्या बात होगी वो बताएंगे, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: तो विकास, जैसा कि आज हमने शुरुआत में ही कह दिया था कि आज का दिन बड़ा ही खास है और आज है मदर्स डे,
1: बिल्कुल
0: तो आज हमारे श्रोताओं से बातचीत भी इसी विषय पर होने वाली है। आज हम जानेंगे, आज तो बहुत मल्टीपल टॉपिक्स होने वाले हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मदर्स डे विश कर रहे हैं, या फिर होता है ना कि सिर्फ आज के दिन प्रेज कर दिया मम्मा को कि आप बहुत अच्छे हो, क्योंकि ये चीज़ मुझे लगता
1: बिल्कुल
0: है कि रोज़
1: बिल्कुल
0: होनी चाहिए।
1: एग्जैक्टली बिल्कुल
0: आज
1: सही
0: कुछ
1: कहा,
0: अलग करेंगे, आज हम रखेंगे एक ऐसा मैसेज जो हमारे
1: बिल्कुल
0: लिसनर्स हैं वो दूसरों को देना चाहेंगे। अगर मम्मा लोग भी चाहें, वो भी अपनी बच्चों को या नेक्स्ट जनरेशन को मैसेज देना चाहें, जो चेंजेस अभी हमारे बीच में आ रहे हैं, जो अभी नॉर्मल नहीं है, हम देखते हैं कि जैसा बिहेवियर बच्चों का पहले था।
1: बिल्कुल, जो पेरेंट्स और
0: हाँ
1: बच्चों के बीच में जनरेशन गैप देखने को मिल
0: हाँ
1: रहा है,
0: हाँ जो पेरेंटिंग में डिफरेंसेस आ रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: अभी की जनरेशन को क्या फील होता है, ओल्डर जनरेशन को क्या फील होता है, आज हम उस पर बात करेंगे। जी हाँ, विषय तो आज का मदर्स डे ही है।

0: आप भी फोन लगाकर हमें बता सकते हैं आपके दिमाग में क्या व्यूज है इसके ऊपर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। तो अभी हम आपको फिलहाल नंबर बता देते हैं जो कि है
1: 02912553300, और हमारे दूसरे नंबर है 02912554300।
0: और अगर नंबर हम हिंदी में बताएं तो वो है 2553300 और दूसरा नंबर है 2554300।

0: तो दोस्तों, आज का जो ओकेजन है मदर्स डे का, इस दिन के बारे में हम जितना इसको स्पेशल बोले वो कम है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक डे ही नहीं होना चाहिए अपनी माँ को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि उनका जो प्यार है, उनके जो सेल्फलेस सैक्रिफाइसेस है, उनकी खुशी है, उनकी जो नादानी मासूमियत है, उनके जो गम है, उसकी कंपेरिजन, उसकी जगह कोई इंसान नहीं ले सकता।
1: बिल्कुल सही कह रही थी। और इसी दिन पर जो है मुझे कुछ लाइनें याद आई है माँ के बारे में, जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे हर मर्ज़ की दवा होती है माँ। कभी डांटती है हमें तो कभी गले लगा लेती है माँ। हमारी आँखों के आंसू अपनी आँखों में समा लेती है माँ। अपने होठों की हंसी हम पर लुटा देती है माँ। हमारी खुशियों में शामिल होकर अपने गम भुला देती है माँ। जब भी कभी ठोकर लगे तो हमें तुरंत याद आती है माँ। दुनिया की तपिश में हमें आंचल की शीतल छाया देती है माँ। खुद चाहे कितनी भी थकी हो, हमें देखकर अपनी थकान भूल जाती है माँ। प्यार भरे हाथों से हमेशा हमारी थकान मिटाती है माँ। बात जब भी हो लजीज खाने की तो हमें याद आती है माँ। रिश्तों को खूबसूरती से निभाना सिखाती है माँ। लफ्ज़ों में जिसे बयां नहीं किया जा सके, ऐसी होती है माँ।
0: क्या बात है विकास, ये छोटी सी पोइट्री में जो आपने पूरी एक माँ के जीवन का सफ़र बताया है,
1: बिल्कुल
0: ये
1: बिल्कुल
0: बड़ा खूबसूरती से बताया है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो मम्मा का रोल होता है हमारी लाइफ में, अक्सर ये होता है कि जब हम घर में एंटर करते हैं तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि माँ कहाँ है।
1: बिल्कुल एग्जैक्टली
0: जब कोई चीज़ गुम जाती है, और मान लीजिए 90%, 99% ऑफ टाइम्स उन्हें वो चीज़ उस जगह पर मिल जाती है जहाँ पर उसे हम भूल के आते हैं, छोड़ के आते हैं। बस ऐसा लगता है कि उन्हें बता दो और वो चीज़ आपको
1: बिल्कुल, वो
0: मिल
1: कहते
0: जाएगी।
1: हैं ना कि घर के हर कोने कोने की जो जिम्मेदारी होती है और जो कोई भी प्लेस होता है उनके बारे में अच्छे से जो पता होता है वो मम्मी का होता है। इसीलिए जब भी हम कभी पूछते हैं मम्मी वो कहाँ पर रखी हुई हुई चीज़ हमारी, या फिर वो नहीं मिल रही है, तो मम्मी फट से बता देती कि अरे बेटा वो तो वहाँ उस अलमारी में रखी हुई है या उस कोने में रखी हुई है।
0: हाँ,
1: तो कह सकते हैं कि उन्हें सब कुछ मालूम होता है।
0: सब मालूम होता है। और हाँ श्रोताओं, अगर आप भी अपने स्टाइल में हैप्पी मदर्स डे विश करना चाहते हैं तब भी आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। नंबर तो हम बार बार रिपीट करते ही रहते हैं, जो कि है 02912553300। दूसरा नंबर है 2554300। तो हाँ, इस दिन को बड़ा स्पेशल बनाइए, क्योंकि वो होता था ना कि बचपन में तो मदर्स डे के दिन भी मम्मी खाना बनाती थी, भले ही दिन उनका स्पेशल हो, पर हाँ उस दिन को स्पेशल बनाने के एफर्ट्स भी वही डालती थी। तो अभी जितने भी यंगस्टर्स हैं जो अभी केपेबल हो गए हैं कि वो खुद कुछ कर सकते हैं अपनी माँ के लिए, तो ज़रूर कीजिएगा। अगर बहुत छोटा एफर्ट भी है तो उनका दिन तो बड़ा स्पेशल बन जाएगा।
1: बिल्कुल रिद्धि, और कहते हैं ना कि वैसे तो हर दिन जो है वो माँ को समर्पित किया जाए तो भी कम है, लेकिन हमारे श्रोताओं से यही कहना है कि आज का दिन जो है वो आप अपनी मदर्स के लिए जो है और भी स्पेशल बना सकते हैं। उनके लिए कुछ ऐसा स्पेशल मोमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आज उन्हें जो है जैसा कि रिद्धि आपने बताया कि आज उनके लिए आप कुछ फूड बना सकते हैं या कुछ गिफ्ट जो है वो आप उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उनके लिए कर सकते
0: हाँ,
1: हैं।
0: छोटे एफर्ट्स हैं। अगर आपको लगे कि आपको अपनी गंदी आवाज़ में गाना भी गाना है तो भी गा दीजिए, वो तो
1: बिल्कुल
0: उसमें भी खुश हो जाती है।
1: बिल्कुल सही
0: तो
1: कहा
0: हाँ,
1: आपने।
0: छोटे छोटे एफर्ट्स डालिए, और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो ज़रूर फ़ोन घुमाइए। हाल फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं ये वाला ट्रैक।

0: तो विकास, आज हम बात कर रहे हैं मदर्स डे स्पेशल पे। तो जैसा कि विकास, मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं हमारे आज के पहले कॉलर। तो आइए जानते हैं आज हमसे कौन बात करने वाले हैं सबसे पहले। हेलो,
1: जी नमस्कार।
0: नमस्ते सर।
2: जी, नमस्कार।
1: मेरा नाम पंडित राकेश चौरसिया
0: जी। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और जैसा कि आज का विषय है मदर्स डे स्पेशल, तो आप बताइए इस विषय पर क्या बोलना चाहेंगे।
1: मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अपनी माँ की सेवा कीजिए, और क्योंकि माँ तो अपना सारा संसार होती है, तो माँ की जीते जी कदर कीजिए।
0: इसी के साथ राकेश जी, आप भी ऐसा मानते हैं कि आज के समय में माँ के साथ समय बिताना बहुत जरूरी होता है
1: क्या?

0: अपनी माँ के साथ समय बिताना कितना ज़रूरी हो गया है। आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि जीवन इतना व्यस्त हो गया है कि लोग समय नहीं निकाल पाते।
1: हाँ, आजकल के बच्चे मतलब जो पढ़े लिखे होते हैं वो समझ नहीं पाते कि हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। लेकिन अपने पुराणों में ऐसा लिखा है कि माँ बाप को निकला तो उसे नर्क से भी बदतर सजा मिलती है।
2: जी जी राकेश जी, तो आपके विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो विकास, आज जो हम इस विषय पे बात कर रहे हैं,
2: जी
0: तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज की जो जनरेशन है, जो नई वाली जनरेशन है, जिसे हम देख रहे हैं कि शायद टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट के साथ थोड़ी सी ज़्यादा आगे निकल गई है,
2: बिल्कुल
0: जो एक सिंसियरिटी है, जो इनोसेंस का लेवल है, वो थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, जिसे हम
2: बिल्कुल सही
0: ऑब्जर्व
2: कह
0: भी
2: रही
0: कर
2: थी।
0: सकते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है?
2: इस पे ये कहना है कि रिद्धि, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले हमारे एक लिसनर से बात करी कि किस तरीके से जो है वो आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं या फिर कोई भी जनरेशन की अगर मैं बात करूँ, एक समय था कि जब लोग कमाने के लिए जो है अपने घर से काफ़ी दूर जाया करते थे, या फिर अगर मैं बात करूँ हमारे उन देश के सैनिकों की जो कि अपना पूरा परिवार छोड़ के जो है वो देश की सुरक्षा के लिए जो है वो बॉर्डर पर जाते हैं, हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, तो उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्हें तो हालांकि मजबूरी में जो है वो अपना घर छोड़ना पड़ता है अपने दूसरी माँ की सेवा करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो यंगस्टर है उनकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम किस तरीके से जो है हमारे परिवार के साथ में रहने का जो है वो समय निकाल सके, या फिर अगर आप कहीं दूर भी जॉब कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर टाइम जो है वो आप डिसाइड कीजिए कि नहीं, मुझे अपनी माँ से मिलना है, मुझे अपने पिताजी से मिलना है, या मुझे अपने फैमिली मेम्बर से मिलना है।
0: तो अभी तो ये हो गया विकास के बहुत लोगों को मजबूरी भी होती है अपने शहर से बाहर
2: बिल्कुल
0: जाना, जैसा
2: बिल्कुल
0: आपने बताया कि कितने ही हमारे देश के बेटे हैं जो सरहद पर हैं,
2: बिल्कुल
0: पर
2: बिल्कुल
0: जो लोग प्राइवेट फर्म्स में हैं उन्हें भी अपना शहर छोड़ के जाना पड़ता है। तो इसका सोल्यूशन तो ये है कि जितने भी लोग हैं उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करना चाहिए घर पर बात करने का, क्योंकि
2: बिल्कुल
0: हमारी फास्ट पेस लाइफ में तो ऐसा होता ही है कि दिन कब निकल रहा है, आप ऑफिस से कब घर आ रहे हो जा रहे हो, वो पता नहीं पड़ता। तो एटलीस्ट हाँ, दिन के 5 या 10 मिनट फिक्स करके रखने चाहिए 24 घंटे में से
2: कि
0: एटलीस्ट।
2: आप फोन पर भी जो है वो
0: हाँ,
2: उनसे बात कर
0: और
2: सकें।
0: हाँ, टेक्नोलॉजी का
2: जी
0: फ़ायदा उठाने की ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप वीडियो कॉल से कनेक्ट हो जाए, आप
2: एग्जैक्टली
0: फ़ोन से कनेक्ट हो जाए, तो ज़रूर से ऐसी चीज़ें कर
2: और
0: सकते
2: इसी बीच
0: हैं।
2: रीति हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे अगले कॉलर, तो आइए करते हैं उनसे बातचीत। हेलो
1: हेलो, नमस्कार सर।
2: जी, जी नमस्कार।
1: हेलो,
2: हेलो
1: नमस्कार सर।
2: जी, जी नमस्कार सर, अपना नाम बताइए।
1: खेतेश्वर कृषि फार्म मीठा, तहसील चिणद्री, जिला बालोतरा से नागेश पुरोहित।
2: जी जी नागेश जी, तो जैसा कि आज का आपने हमारा विषय सुना ही होगा कि आज जो है वो मदर्स डे स्पेशल है, तो आपके क्या विचार है इस दिन को लेकर?
1: जी बिल्कुल, मदर्स डे पर सबसे पहले मेरे सभी माताओं को मेरा प्रणाम।
2: जी बिल्कुल
1: माँ तो माँ होती है, चाहे किसी की भी हो,
2: बिल्कुल सही
1: माँ
2: कहा
1: की
2: आपने।
1: ममता को सैल्यूट करते हैं। माँ की ममता के आगे किसी की नहीं चलती। माँ अपने ऊपर कितनी भी कठिनाई आए तो झेल लेती हैं, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर कभी कोई आंच नहीं आने देती हैं। कुछ लोग आज के इस समय में ऐसे होते हैं जो जानबूझकर अपने माता पिता को इग्नोर कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
2: बिल्कुल सही कहा आपने नागेश जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और जितना हो सके हमें उनके लिए वक्त निकालना चाहिए।
1: बिल्कुल, जो साए जितना वक्त माँ के साथ दूर दराज अगर नौकरी कर रहे हैं, अगर समय नहीं है, घर पर नहीं चल सकते, तो कम से कम अपनी माँ से फोन, आज का तो समय बहुत बदला हुआ है, फोन पर ही 2 मिनट 4 मिनट जितना समय हो माँ से बात कर लेना ही अच्छा माँ को लगता है।
2: जी जी बिल्कुल सही कहा नागेश जी, तो आपने अपने जो विचार है वो हमारे साथ शेयर किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इसी विषय पर, और आपके भी जो विचार हैं आप हमसे व्यक्त कर सकते हैं। और हमारा नंबर है, हम फिर से बता देते हैं, वो है 0291255300, और दूसरा नंबर है 2554300। हाल फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं ये वाला ट्रैक।

0: विकास आज की शाम के हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए करते हैं उनसे बातचीत। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्ते सर।
2: जी नमस्कार,
0: क्या नाम है आपका?
1: सर मैं गांव तिवरी से मोहम्मद शाकिर बैली बोल रहा हूँ। जी
0: जी शाकिर जी, तो आज आपने विषय सुन लिया होगा, मदर्स डे के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, तो इस विषय पे आपके क्या विचार है बताइए।
1: मदर्स डे है जी, बहुत अच्छा है। मम्मी पापा का तो आशीर्वाद तो बहुत रहता ही है जी, और मम्मी की इज्जत करे जितना भी कम है अपन के लिए।
0: ये बात बहुत सही है।
1: और मम्मी के तो पाँव के नीचे जन्नत है। माँ की ममता तो बहुत बहुत है जी, उनकी सेवा अपन नहीं कर सकते इतनी तो, लेकिन माँ तो माँ ही है जी।
0: जितना प्यार वो हम पे लुटाती है उसका तो हम शायद आधा भी नहीं कर पाते।
1: हाँ मैडम, ऐसा है कि माँ के पास बैठना चाहिए, माँ के साथ दुख सुख की बात करना चाहिए। हम थोड़ा सा अलग रहते हैं, 2 किलोमीटर दूर रहते हैं, लेकिन मम्मी पापा से मिलने के लिए सुबह शाम टाइम निकाल कर जाता हूँ और माँ की दुआ लेके आता हूँ, तब दिन भर अच्छा सुकून मिलता है। सही में माँ बाप की दुआ लेके निकलते ना तो कोई परेशानी नहीं होती है मैडम।
0: ये तो है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर दवा असर नहीं करती वहाँ दुआ असर करती है।
1: बिल्कुल जी मैडम, दुआ तो दुआ ही होती है, माँ की दुआ तो सब लोग निकल गए ना तो अपन लीला ले रहे हैं। दुनिया में कुछ नहीं है, सब लोग हाँ पैसा दौलत सब है, लेकिन

0: माँ की जितनी प्यार मोहब्बत मिलती है ना, उसका तो खाना सब लोग सूखी रोटी दे देंगे ना, तो भी वो सुकून से इतना मस्त लगेगा कि खाना खाना ही है। माँ का हाथ का खाना खाते हैं, माँ के हाथ से सब कुछ करते हैं, माँ अपन को पाल के बड़ा बड़ा प्यार से करती है। छोटे होते तब माँ लुलाती है, आंखों में काजल डालती है, कितना अच्छा लगाती है माँ के दिल से। बस क्या कहे मैडम, माँ के लिए तो बस सब भी बहुत ज्यादा है।
1: आपने बड़ी खूबसूरत बातें कही, और जैसा आपने कहा कि एक बच्चे का बचपन है उसको खूबसूरत माँ ही बना
0: कितना
1: सकती।
0: दुलारते हैं बच्चे को सब लोगों के, बस थोड़ा सा रो लिया तो फर्स्ट माँ खाना छोड़ के आ जाती है, कपड़े धोती है तो वो छोड़ के आती है, फ्रेश करिए तो वो आ जाती है। माँ के तो दिल में इतना होता है कि बस बच्चा रोना नहीं चाहिए, और माँ को अपन रुला देते हैं तो अपन की कोई सब लोग जिंदगी भी नहीं है मैडम।
1: जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही सर, और हम
0: शुक्रिया
1: लोगों
0: मैडम,
1: से
0: बहुत
1: इस
0: बहुत
1: प्यारी सी शाम पे
0: धन्यवाद।
1: जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो विकास, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे जब छोटे होते हैं या बड़े भी हो जाते हैं, तब ऐसा कई बार होता है जीवन में, ऐसे मूड आते हैं जब कहते हैं यार मम्मी आप में इतनी ताकत नहीं है, आप में इतना वो पावर नहीं है, ये काम हम कर लेंगे।
2: बिल्कुल सही कहा आपने रिति। और कहते हैं ना कि जैसा कि अभी हमारे श्रोता जो भी हमारे कॉलर है वो हमसे कनेक्ट हो रहे हैं और अपने अपने विचार जो है वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, तो मुझे भी एक चीज़ याद आई है कि बेटे के घर आने तक का इंतज़ार और बेटी के घर से जाने का जो गम होता है वो एक माँ से ज़्यादा कौन जान सकता है।
1: बिल्कुल विकास। और इसी के साथ जब हम बात करें कि एक लेडी जब लेबर
2: बिल्कुल
1: पेन से गुजरती है, जिसे हम प्रसव पीड़ा कहते हैं,
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: तब ऐसा कहा जाता है जो यूनिट ऑफ पेन होता है उसे डोल कहते हैं। तो जब एक लेडी बर्थ दे रही होती है तो उन्हें 57 यूनिट्स ऑफ डोल का प्रेशर फील होता है अपनी बॉडी में, जो कि एक साथ 20 हड्डियाँ टूटने का दर्द होता है। और ऐसा
2: जी
1: कहा जाता है कि जब एक आम इंसान को 45 यूनिट्स ऑफ डोल का प्रेशर फील होता है तो उसकी जान भी जा सकती है, वो इतना फेटल
2: बिल्कुल
1: होता है। तो जब हम कहते हैं कि यार मम्मी आप में इतनी पावर नहीं है, ताकत नहीं, आप रहने दो हम कर लेंगे,
2: बिल्कुल
1: तो मैं उन
2: बिल्कुल
1: सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो नॉर्मल फेटल यूनिट होता है, जो कि 45 के लेवल पर होता है, उससे ज़्यादा यानी 57 यूनिट्स ऑफ डोल पेन एक माँ अपना फेस करती है लेबर के टाइम। और जब वो बर्थ देती है तो हम कह सकते हैं कि हाँ उनका भी वापस एक रीबर्थ होता है, जो पेन वो पूरा एक टाइम का वो एक जोन होता है, तो वो जो फेस करना होता है वो शायद एक आम इंसान कभी समझ भी नहीं सकता। और जो लड़की माँ बनी है उसे वो स्पेशल मोमेंट्स याद होते हैं, और हाँ वो कह सकते हैं कि उस वक्त उसके अंदर एक शेरनी आ जाती
2: बिल्कुल सही
1: है।
2: कहा आपने रिद्धि। तो बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा और इसी बीच जो है वो हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो
0: हेलो
2: हेलो जी सर
0: हेलो
2: नमस्कार।
0: हेलो,
2: हेलो
0: हाँ जी जगदीश तंवर आज बोल कर रहा हूँ,
2: जी
0: जानना
2: जी
0: बाकर से।
2: जी जी जगदीश जी स्वागत है आपका कार्यक्रम युववाणी में। तो जैसा कि आपने आज का हमारा विषय सुना ही है कि आज जो है वो मदर्स डे स्पेशल है, तो आपके क्या विचार है इस दिन पर?
0: मेरा ये विचार है कि पहले तो जो भी इंसानी जो जिंदगी है
2: जी जी
0: उस वो देन सिर्फ मातृत्व की है, उसी से इंसान जन्म लिया और ये दुनिया की संरचना हुई है। और माँ से बढ़कर जब शिशु जन्म लेता है तो प्रथम वो जो देखता है तो वो अपने मातृ को, माँ को ही देखता है। और ये दुनिया संसार में जीना, जीवन कला सारी जो रचना होती है मानव जीवन की, वो मातृ की देन होती है। और माँ से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता, और माता और पिता दोनों मिलकर ये जो संसार है मानव लोग उसको सुंदर और सुशील और संस्कारवान बनाते हैं, शांति का प्रतीक है। और दूसरी माँ हमारी माँ भारती है,
2: जी
0: जिसके
2: जी
0: लिए जो पूरी सुख सुविधा और संपन्नता, और हम जो कर्म करते हैं समाज कल्याण के
2: जी जी
0: और आम जन मानव कल्याण के लिए, तो ये सिर्फ प्रथम गुरु हमारी माता होती है,
2: बिल्कुल सही कहा
0: जन्मदाता।
2: आपने जगदीश जी कि जो इंसान की सबसे पहले गुरु होती है वो माँ ही होती है, क्योंकि बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले उसका जो लगाव होता है वो सबसे ज़्यादा माँ के साथ में होता है। तो कह सकते हैं कि माँ के साथ जो उसका लगाव बहुत ही ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण रहता है। तो जगदीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए।
1: तो दोस्तों आज इसी विषय पर बात चलती रहेगी, और इसी के साथ आज हम बात विकास एक ये भी करना चाहेंगे कि जब कोई कहता है ना कि तुम्हारी शक्ल तुम्हारी माँ से मिलती
2: बिल्कुल
1: है, तो वो जो खुशी होती है उस वक्त वो हर
2: एग्जैक्टली
1: बच्चा समझ सकता है। और शायद जब छोटे होते तब इतना नहीं समझते, पर हाँ जब बड़े होते हैं, जब लोग कहने लग जाते, कहते तुम तो एग्जैक्टली अपने माँ जैसी दिखती हो, तो वो खुशी अलग होती है। और हम अक्सर देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं, मतलब पूरी फैमिली में एक बच्चा तो

0: होता ही होता है जो अपनी माँ पे गया होता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और मुझे लगता है रिद्धि की अक्सर लोग ये देखते हैं कि आप, जैसा कि आपने बताया कि आपका फेस जो है आपके मम्मी पे गया है, लेकिन मैं ये मेरा ये मानना है पर्सनली कि कहीं ना कहीं हमें उनके गुण जो है वो भी अपनाने चाहिए कि किस तरीके से जो है हम पूरे घर को संभाल सकते हैं, या किस तरीके से जो है उनकी तरह जो है वो हम अपने बच्चों के लिए जो है वो प्रोटेक्टिव रह सकते हैं।
0: ये बातें बड़ी खास है और आज के दिन तो यही बातें होने वाली है। इसी के साथ गानों का सिलसिला भी चलता रहेगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये वाला गाना।

0: विकास, आज हम देख रहे हैं कि जो पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर
1: जी
0: हर जगह पर मदर्स डे पूरे तरीके से फ्लड हो रखा है। जहाँ पर देखें कि बाहर छाई हुई है हैप्पी मदर्स डे की, हर जगह कोई रील स्टेटस लगा ही दिख रहा है आज पूरे दिन में।
1: बिल्कुल सही कहा आपने रिद्धि। और लेकिन मेरा ये मानना है कि जितना लोग जो है वो रील्स के अंदर या फिर सोशल मीडिया पर अपना स्टेटस लगाकर जो है वो उनसे प्यार जाहिर करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आप रियल लाइफ में जो है वो उनके लिए कितना सम्मान करते हैं या फिर उनके लिए कितने इमोशन है आपके लाइफ में। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें, घर से निकलते टाइम जो है वो आप उनसे थोड़ी देर बात करते जाइए कि हाँ आज क्या हुआ, या फिर मैं मम्मी वहाँ जाने वाला हूँ, या फिर ये करने वाला हूँ, या फिर अगर मैं बात करूँ कि जब भी आप घर से वापस आते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आपको उनसे कनेक्ट करती है।
0: और वो कनेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि एक माँ की हमेशा एक्सपेक्टेशन रहती है कि उनके बच्चे उनसे बात करते रहें, क्योंकि उनकी तो पूरी दुनिया उनके बच्चे ही होते हैं। और हाँ, एक सर्टेन पॉइंट पे लाइफ का ऐसा पॉइंट आता है कि जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बात करना, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि एज के साथ साथ लोग अपनी बातें, अपने इमोशंस छुपाने लगते हैं कि शायद उसे जाहिर किया जाए, किसी को बताया जाए तो क्या सोच लेंगे, क्या होगा, क्या रिएक्शन आएगा। तो हाँ, बात करनी बहुत ज़रूरी है।
1: और कहते हैं ना रिद्धि कि मोबाइल में रखने वाली तस्वीर जो है वो एक ना दिन आपसे डिलीट हो ही जाती है, लेकिन दिल में बनाने वाली जो तस्वीर है वो कभी भी डिलीट नहीं की जा सकती है।
0: क्या बात है। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर जुड़ चुके हैं, आइए करते हैं उनसे बातचीत। हेलो
2: हेलो,
0: जी सर, नमस्ते
2: नमस्ते सर। पापड़ा चौराहे से कृष्णा राम अर्ज करूं। हाँ
0: जी। कृष्णा राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में
2: जी, तो आज माँ का विषय है ना सर।
0: जी।
2: जी,
0: बताइए।
2: माँ तो माँ है, माँ की तो बात ही क्या है मैडम। माँ तो भगवान का रूप है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
2: माँ जन्म देवाल है, जो भगवान का रूप है। जितना पूजे इतना कम है माँ को। तो
0: जहाँ पर भगवान
2: माँ
0: नहीं
2: की
0: जा
2: सेवा
0: सकते वहाँ वो
2: करो
0: माँ भेज
2: और
0: देते हैं।
2: आशीर्वाद लो। आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी शरीर में, घर में कोई तरह की। माँ का आशीर्वाद लोगे ना तो घर हरा भरा रहेगा, कोई बीमारी नहीं आएगी।
0: हाँ।
2: और माँ की आत्मा, बाप की आत्मा जलाओगे ना मैडम जी, तो घर में थोड़ा मुसीबत भी आ सकती
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि
2: है।
1: हमेशा जो है वो अपने माता पिता का हमें सम्मान करना चाहिए।
2: मगर सर एक बात है कि इसमें बेटियों से, बेटों से ज्यादा बेटियां माँ को चाहती बहुत ज्यादा। मैंने देखा है, हमारी 3 बहनें हैं जो हमारी माँ को हर 3-4 दिन में आती है, संभाल के जाती है, और अच्छी सेवा बेटियां करती सर। जितने बेटे नहीं करते ना,
1: जी
2: इतनी बेटियां अपने माँ की सेवा कुछ ज्यादा ही करती है।
0: जी, ये तो है। और कृष्णा राम जी, ये चीज़ भी है कि
2: हाँ
0: हर
2: जी,
0: लड़की के अंदर माँ का भाव होता है, वो चाहे किसी
2: हाँ
0: भी
2: जी,
0: रूप में
2: माँ
0: हो,
2: तो माँ
0: बेटी
2: है,
0: हो,
2: माँ का
0: बहन
2: क्या
0: हो।
2: कहना सर। माँ की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता ना सर।
0: जी, बिल्कुल।
2: हाँ जी, बहुत
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा राम जी।
2: बहुत धन्यवाद सर।
0: तो विकास, जैसे अभी हमारे कॉलर थे हमारे साथ जुड़े, तो मेरा ये भी मानना है कि जो मदर्स डे है ये हमारी माँओं के साथ स्पेशल है, हमारी लाइफ की हर उस लड़की के लिए जो जुड़ी है हमसे। अब वो किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपकी भाभी हो, चाची हो,
1: बिल्कुल
0: मामी हो, मासी हो, तो इनका भी जो रोल है लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जहाँ पर हमें लगता है कि हमें हमारी मामा नहीं मिल रही, या कोई हेल्प की सिचुएशन है जहाँ पर वो बिज़ी है, ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ पर इन लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे जो फैमिली में दूसरे मेंबर, जैसे अभी आपने नाम लिया, कि उनके साथ भी जो है वो हम अपनी कोई ऐसी बात है वो शेयर कर सकते हैं, या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो उनके साथ शेयर कर सकते
0: हाँ,
1: हैं।
0: घर की कोई भी लेडी हो या फिर आपकी लाइफ में कोई भी लेडी हो, मैंने अक्सर ये देखा है कि जहाँ पर रिलेशनशिप्स भी होते हैं वहाँ पर भी एक लड़की कहीं ना कहीं उसके अंदर वो मदरली फीलिंग आई जाती है। तो हम देखते हैं कि कोई सिचुएशन है जहाँ पर कोई फंस जाता है, जहाँ पर कोई एडवाइस चाहिए, या फिर जहाँ पर कोई हेल्प चाहिए, जहाँ पर ऐसा जिक्र ना हो कि मैं हेल्प कर रही हूँ, तो वहाँ पर एक लड़की के अंदर मदरली फीलिंग आई जाती है, चाहे वो किसी भी एज में हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। पर हाँ, आज के दिन तो कह सकते हैं कि हर लड़की को हैप्पी मदर्स डे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये वाला गाना।

विकास, जैसे कि हम देख रहे हैं टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, तो वही पेरेंटिंग के जो तरीके हैं वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। जो पुराने जनरेशन की मदर्स थी, जो हमारी मदर्स हैं, और अभी के जो पेरेंट्स, अभी स्पेशली जो मदर्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। जहाँ पर हम देखते थे कि जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मियाँ जो थी वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ टैकल कर लेती थी, हर सिचुएशन हैंडल कर लेती थी।

0: पर आज की जो जनरेशन की मदर्स है वो ऑलरेडी अपने जॉब्स में ऑक्यूपाइड होती हैं, और वो बहुत अच्छे से कोशिश करती है कि कैसे वो अपना काम, अपना घर, अपने बच्चे को बहुत अच्छे से संभाले।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। पहले की अगर मैं बात करूँ तो पहले के टाइम में जो मदर्स होती थी उनके लिए जॉब लाइफ जो है वो वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेकिन आज के टाइम की अगर बात करें तो हर दूसरी तीसरी जो मदर है वो अपनी जॉब लाइफ भी जो है वो अपने घर के साथ साथ जो है वो मैनेज करती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि किस तरीके से जो है वो बच्चों की पेरेंटिंग जो है वो और भी अच्छे से की जाए, या फिर कभी कभी उन्हें वो चीज़ें नहीं दिखाई देती है कि वो इतना बिजी हो जाती है अपने काम में और घर में।
0: हाँ, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके चलना, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। तो जितने भी नए जनरेशन की मदर्स हैं वो अगर हमें सुन रही हैं, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। क्योंकि कई बार ये होता है कि सिर्फ सुनने की ज़रूरत होती है, और मैं ये नहीं कह रही कि मतलब इस जनरेशन में कोई कमी है, बट हाँ, जिस तरीके से वर्कलोड ऊपर आ रहा है, जिस तरीके से
1: चीज़ें
0: पहले
1: बदल रही हैं।
0: न्यूक्लियर फैमिलीज
1: बिल्कुल
0: का कॉन्सेप्ट अब ज़्यादा आ गया है। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी तो होता
1: बिल्कुल
0: था कि एक बच्चा है तो उसको संभालने के लिए 10 लोग घर में है,
1: जी जी
0: पर अब ऐसा है कि न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है, और जहाँ पर सिर्फ एक लड़की एक बच्चे का ध्यान रखती है तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है पेरेंटिंग पे। तो हाँ, अभी जो बच्चे आ रहे हैं, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, और अभी जो यंग जनरेशन है जो मदर्स बन रही है, तो यू आर डूइंग अ रियली ग्रेट जॉब। इसे अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विकास, मुझे ऐसा लगता है कई बार लाइफ में सिर्फ अप्रिसिएशन के थोड़े से वर्ड्स है, वो अगर सुनने को मिल जाए तो अगले का दिन बन जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि एप्रिसिएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
0: और हाँ, जितने भी लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये होता है कि जो भी आपको फील हो रहा है, जो आपके इमोशंस हैं, या फिर जो सिचुएशंस हैं जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे, इट वुड बी ग्रेट अगर आप अपने फैमिली से उसे कन्वे करें। आप जाके बताएं कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, आपको कुछ सीखना है, कुछ जानना है, तो प्लीज़ कम्युनिकेशन गैप कहीं पर नहीं आनी चाहिए। जहाँ लगे कि हेल्प चाहिए, प्लीज़ मांग लो, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हमारा अगला ट्रैक।

0: दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि ये जो आज की शाम का आखिरी गाना था, ये बहुत ही ज़्यादा जस्टिस करके गया है, क्योंकि हाँ, तुम हो तो गाता है ये दिल, और हर माँ के लिए ये लाइन बहुत ही सूटेबल है, क्योंकि सच में तुम होती हो तो गाता है ये दिल। तो जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी माएँ हैं जिन्होंने ये शो सुना है, उन सबको दिल से हैप्पी मदर्स डे। दुनिया की हर माँ स्वस्थ रहे, खुश रहे, और हमेशा अपने घर की चमक जो है उसे हमेशा बढ़ाती रहे। तो इसी के साथ हम आपसे लेना चाहते हैं विदा, क्योंकि बज गई है शाम की 6। आप जुड़ी थी दो प्यारी आवाजें, मेरा नाम है रिद्धि
1: और मैं विकास। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे फिर से कार्यक्रम युवाणी में ठीक शाम 5 बजे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी माँ से प्यार करते रहिए। नमस्कार। श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे युवाणी, यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। वक्त है हिंदी और इंग्लिश न्यूज का, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है।
3: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया, उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। श्री मोदी ने गुडिबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने काजीपेट विजयवाड़ा रेल मल्टीट्रैकिंग गलियारा में काजीपेट अंडर रेल बाईपास सहित कई रेलवे और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को भी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी की पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकारों को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया, साथ ही प्रारंभिक

0: की चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं के संबंध में राजस्थान विशेष अभियान समूह की जांच में सहयोग कर रही है। एनटीए ने कहा है कि 3 मई को यह परीक्षा पूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आयोजित की गई थी। एजेंसी को 7 मई को परीक्षा के आसपास कथित कदाचार गतिविधियों के संबंध में सूचना मिली थी। एनटीए ने स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए इन सूचनाओं को केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथे ओवर में 1 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. These projects collectively aim to strengthen connectivity, improve logistics efficiency, enhance safety and provide a better travel experience for people. The event held at the Hyderabad International Convention Centre was attended by Telangana Governor Shri Pratap Shukla, Chief Minister A. Revanth Reddy, Union Minister G. Kishan Reddy and other senior leaders. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the center, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour.
2: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है पेट्रोल डीजल गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
1: Among the major projects unveiled include PM Mitra Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park. Built at an estimated cost of around 1700 crore rupees, it is the country's first fully operational PM Mitra Park and is aimed at creating an integrated textile ecosystem under the center's 5F vision, spanning farm, fiber, factory, fashion and foreign markets. Earlier in the day, Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation. The Prime Minister also called for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. In Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath today expanded his cabinet with 6 BJP leaders taking oath as ministers. Additionally, 2 ministers of state were elevated and assigned independent charge. Governor Anandibhen Patel administered the oath of office in secrecy at the ceremony held at Jan Bhavan in Lucknow. Former BJP state president Bhupendra Chaudhary and BJP leader Manoj Pandey were inducted as cabinet ministers. State ministers Ajit Pal Singh and Somendra Tomar were promoted and given independent charge. The founder of Tamilaga Vetri Karagam TV, K. के एक्टर टर्न पॉलिटिशियन सी जोसेफ विजय हैज बीन स्वॉन इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु टुडे. गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर एडमिनिस्ट्रेशन

शाम 7 बजे आप सुनेंगे हमारा लोकप्रिय ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल। इसके तुरंत बाद 7:30 पर ज्ञान विज्ञान मौसम और लोक संस्कृति की झंकार लिए प्रसारित होगा सीमा डेरी गूंज। रात्रि का संगीत संसार भी रहेगा बेहद मनमोहक। 8 बजे और 9:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत, जहां हर धुन आपको सिनेमा के एक सुनहरे दौर की सैर कराएगी। और 9:15 पर पेश होगा सुरों की सरलता से सजा कार्यक्रम सुगम संगीत।

और रात 10 बजे सुनिएगा रवि वासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, जहां देश भर के श्रेष्ठ कलाकार अपनी शास्त्रीय प्रस्तुतियां देंगे। तो श्रोताओं, ये थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। आइए अब एक नजर कल होने वाले कार्यक्रमों पर।

सुबह की शुरुआत होगी सकारात्मकता से भरे कार्यक्रम नमस्कार के साथ, जो 8:30 पर प्रसारित होगा। इसमें रहेंगी दिन भर की उपयोगी जानकारियां, मौसम का हाल और समाचारों की झलक। दोपहर के समय 1:05 पर किसानों के हितों पर आधारित कार्यक्रम कृषि जगत प्रसारित होगा, जिसमें कल चर्चा की जाएगी पशुओं में सर्रा रोग के कारण और उनके उपचार।

संस्कृति से जुड़ा सुंदर लोक कार्यक्रम गणगौर। दो बजकर 30 मिनट पर एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित होगा, जो विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए बेहद उपयोगी है।

फिल्म संगीत कल सुने जा सकेंगे सुबह 6:45, 11:00, 8:00 और 9:30 पर, जबकि सुगम संगीत का साथ मिलेगा सुबह 10:30, दोपहर 12:30 और रात्रि 9:15 पर।

तो ये थे आकाशवाणी जोधपुर सन सिटी चैनल के आज और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। वक्त है देश की मिट्टी से जुड़े कार्यक्रम देशगान का।

0: नगरे आयोजिते धनुष क्रीडायाः विश्वचषक स्पर्धायां भारतीय महिला रिकर्व दलेन चीन देशं पराजित्य स्वर्ण पदकं प्राप्तम्। आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य लखनऊ सुपर जायंट्स दलं चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरोति। प्रप्रथमं क्रीडयता लखनऊ सुपर जायंट्स दलं अष्ट क्रीडकानां हानि पुरस्सरं 3,200 धावनांकाः विनिर्मिताः। सम्प्रति उभयोः दलयोः मध्ये स्पर्धा प्रचलति। मुख्यवार्ता पुनरेकवारम्। अद्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तेलंगाना राज्ये प्रायः 94 कोटि रूप्यकाणां आधारभूत संरचना औद्योगिक परियोजनानां च उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। उत्तरप्रदेश राज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अद्य स्वमंत्रिमण्डलस्य विस्तारं कृतवान् इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। वक्त है हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार का, जिसे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा।
2: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में समाज की भागीदारी को राजनीतिक व्यवस्था से कारगर बताया। देशभर में कल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन राज्यस्तरीय समारोह जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर राज्य के विकास के लिए केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव का प्रकोप जारी, दिन के साथ रातें भी काफी गर्म। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण के लिए सभी से एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में समाज की भागीदारी राजनीतिक व्यवस्था से कहीं अधिक कारगर है। प्रधानमंत्री आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने सभी से पर्यावरण के लिए जिम्मेदारी, युवाओं को रोजगार और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ राष्ट्र निर्माण में सहभागी होने की अपील की।
3: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि आध्यात्मिक केंद्रों के समर्थन से किसानों को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और धरती को नुकसानदायक रासायनिक उर्वरकों से बचाने में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि ये केंद्र प्रति बूंद अधिक फसल पहल को बढ़ावा देने, जल संरक्षण, बिजली की बचत और सिंगल यूज प्लास्टिक को नकारने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। देशभर में कल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के 1000 साल और मंदिर पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय समारोह गुजरात के सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजन होगा, साथ ही पुनर्निर्मित मंदिर के शिखर का 11 तीर्थस्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए ऐसे अवसर सभी में नई ऊर्जा का संचार करते हैं।
3: कल सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं।
2: राज्य में भी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। राज्यस्तरीय कार्यक्रम जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समारोह में शामिल होंगे। कला और संस्कृति विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी ने बताया कि इस अवसर पर प्रदेश भर के शिवालयों में विशेष धार्मिक कार्यक्रम होंगे, साथ ही राष्ट्रीय आयोजन का सीधा प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर रहे।

0: उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में जल जीवन मिशन की प्रगति, रामजल सेतु लिंक परियोजना और यमुना जल समझौते पर चर्चा की गई। साथ ही राजस्थान के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से भी भेंट की। इस दौरान राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा तथा शहरी विकास से जुड़े विषयों पर बातचीत हुई। श्री शर्मा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष से भी मुलाकात कर हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत पर बधाई दी। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज अलवर में साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। श्री यादव ने सभी को मातृ दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें जन्म देने वाली माता और धरती माता दोनों के प्रति कृतज्ञ रहना आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य का अस्तित्व संभव नहीं है। केंद्रीय मंत्री श्री यादव और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज अलवर, खैरथल तिजारा और कोटपूतली क्षेत्र के करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। अलवर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि इन विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाएगा।
1: जो राम जल सेतु परियोजना है उसमें विशेष रूप से डडीकर का रिजर्वायर, नीमराणा का रिजर्वायर, अलवर भरतपुर चंबल मेगा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को लेकर के, यमुना लिंक प्रोजेक्ट हरियाणा और राजस्थान को लेकर, राणा प्रताप सागर से बिलासपुर वाटर लिंक प्रोजेक्ट को लेकर, उसके साथ ही अलवर शहर के वाटर सप्लाई के 25 करोड़ के विषयों को लेकर, उसके साथ ही जहाँ तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का विषय है, रामगढ़ में जो हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहते हैं वो हमारा एनसीपी जोन में आ रहा है, उसको लेकर के चर्चा हुई।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। व्याख्याता कृषि विज्ञान भर्ती परीक्षा 2022 में पेपर लीक और नकल गिरोह का खुलासा हुआ है। एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने आज जयपुर में प्रेस वार्ता में बताया कि भर्ती परीक्षा में संगठित तरीके से पेपर लीक किया गया और फर्जी डिग्री तथा प्रमाण पत्रों के माध्यम से नौकरी हासिल करने की कोशिश की गई। गिरफ्तार अभ्यर्थी अशोक कुमार यादव ने पूछताछ में पेपर लीक की बात कबूल की है। एडीजी ने बताया कि पेपर लीक मामले में शेर सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा और उसके रिश्तेदार विजय डामोर को भी गिरफ्तार किया गया है। एसओजी कटारा के आरपीएससी सदस्य बनने की नियुक्ति प्रक्रिया और उसके द्वारा किए गए पेपर लीक से जुड़े नेटवर्क की भी जांच कर रही है।
2: हमारे द्वारा बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया है। बाबूलाल कटारा के गिरफ्तारी के उपरांत में उनसे पूछताछ करी जा रही है। पूछताछ में तरह तरह के जानकारियां प्राप्त हो रही है। मेन चीज कि बाबूलाल कटारा द्वारा स्वयं द्वारा क्या क्या गड़बड़ियां करी गई उसके बारे में जानकारी, इसके अलावा उनके कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने स्वयं ने नहीं करी हो लेकिन उनकी नॉलेज में होगी और क्या क्या गड़बड़ियां हुई है उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन एकत्रित करी जा रही है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इस बीच नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित गड़बड़ियों के लिए राजस्थान एसओजी को जांच में सहयोग कर रही है। एनटीए इस मामले में सभी जरूरी डेटा और तकनीकी सहायता भी दे रही है। एनटीए की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 3 मई को ये परीक्षा पूरे सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत आयोजित की गई थी। 7 मई को परीक्षा के बारे में कथित कदाचार गतिविधियों के बारे में एनटीए को सूचना मिली। इसके बाद आवश्यक कार्यवाही के लिए ये सूचनाएं केंद्रीय एजेंसियों को भेज दी गई। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया। उन्होंने प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी तालमेल पर भी चर्चा की। गृहमंत्री ने लंबी अवधि के बाढ़ निवारण उपायों की प्रगति को भी जांचा। इनमें अहम बुनियादी परियोजनाओं का संरक्षण, नदी प्रबंधन पहल और पूर्वानुमान की वैज्ञानिक प्रगति शामिल है। बैठक में जनजागरूकता, जानमाल के नुकसान को रोकने और आवश्यक राहत सामग्री तथा दवाओं के पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने पर भी मंथन किया गया। और अब मौसम।

0: बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में हीट वेव का प्रभाव बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के लिए पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में तेज गर्मी और लू को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। यह दिन के साथ ही रात में भी हीट वेव का असर रह सकता है। आज भी इन जिलों में लू का प्रकोप रहा। इन जिलों में दिन का पारा औसतन 44 से 45 डिग्री सेल्सियस मापा जा रहा है। वहीं चित्तौड़गढ़, बीकानेर, उदयपुर, जालौर और श्रीगंगानगर भी तेज गर्मी की चपेट में हैं। इधर पूर्वी राजस्थान के जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है। हालांकि जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, सीकर, टोंक और झुंझुनू में धूप की तपिश और उमस लोगों को परेशान कर रही है। सुबह शाम हल्की हवाएं चलने से मामूली राहत मिल रही है। कल से राज्य में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। इससे कई जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। सवाईमाधोपुर जिले में पशुओं में मुंहपका, खुरपका बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। पशुपालन विभाग की ओर से ये अभियान 15 मई तक चलेगा। विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. राजीव गर्ग ने बताया कि जिले में अब तक 2.5 लाख से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने पशुपालकों से गौवंश का समय पर टीकाकरण करवाकर इस अभियान में भागीदारी निभाने की अपील की है।
1: सवाईमाधोपुर जिले में खुरपका मुंहपका रोग के लिए जो FMD टीकाकरण कार्य का सप्तम चरण अभी इस वर्ष राजस्थान के अंदर सवाईमाधोपुर जिले ने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करते हुए अधिक से अधिक पशुपालकों को लाभान्वित किया है। मेरा समस्त जिले के पशुपालकों से अधिक पशुओं में अपने टीकाकरण कराने का आह्वान किया जाता है ताकि हम इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकें, ताकि ये पशुओं को नुकसान न पहुंचा पाए।
0: उत्तर पश्चिम रेलवे बाड़मेर से हरिद्वार के बीच कल से विशेष रेलगाड़ी चलाएगा। ये सेवा सप्ताह में 2 बार संचालित होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि ये रेलगाड़ी बाड़मेर से हर सोमवार और गुरुवार को उपलब्ध रहेगी। ये विशेष ट्रेन 16 जुलाई तक चलेगी। आईपीएल क्रिकेट के प्लेऑफ में आज 2 मैच हो रहे हैं। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच जारी है। चेन्नई में खेले जा रहे इस मैच में लखनऊ की टीम ने सीएसके को जीत के लिए 204 रनों का लक्ष्य दिया है। वहीं दूसरा मैच शाम 7:30 बजे से रायपुर में खेला जाएगा। इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और मुंबई इंडियंस की टीमें आमने सामने होंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में समाज की भागीदारी को राजनीतिक व्यवस्था से कारगर बताया। देशभर में कल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन राज्यस्तरीय समारोह जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर राज्य के विकास के लिए केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव का प्रकोप जारी, दिन के साथ रातें भी काफी गर्म। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से अलवर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख अविनाश मल्होत्रा ने तैयार किया है। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े पिछले दिनों अलवर पहुंचे। उन्होंने मत्स्य यूनिवर्सिटी के 6ठे दीक्षांत समारोह में भाग लिया। समारोह में उन्होंने 71 मेधावी छात्रों को उपाधि और मेडल प्रदान किए। इनमें 37 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 28 पीएचडी उपाधियां शामिल हैं। राज्यपाल ने समारोह में कुल 44,293 छात्रों को डिग्री और उपाधि प्रदान की। बीते दिनों केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर शहर में पार्क लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने आमजन और विभिन्न संस्थाओं से लाइब्रेरी के लिए पुस्तक दान करने की अपील की। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से पिछले दिनों जिले में भी एसआई पुलिस भर्ती 2025 की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। 2 दिन तक 2-2 पारियों में हुई इस परीक्षा के लिए कुल 64 परीक्षा केंद्र बनाए गए। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा संपन्न कराने के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की ओर से सख्त निगरानी की गई। साथ ही डमी कैंडिडेट पकड़वाने या नकल की सूचना देने वालों के लिए 1,00,000 रूपये के इनाम की घोषणा भी की गई। अलवर में नगर निकाय चुनाव के लिए जिले के सभी वार्डों की निर्वाचक नामावलियां तैयार की जा रही हैं।

0: है। नगर निगम के 65 वार्डो के लिए निर्धारित सभी मतदान केन्द्रों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इस दौरान मतदाता अपने संबंधित मतदान केन्द्र पर पहुंचकर प्रगणक के पास उपलब्ध फोटोयुक्त मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रचार प्रसार और योजना से मिलने वाले लाभों की जानकारी देने के लिए पिछले दिनों जिले के विभिन्न स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में 575 लाभार्थियों के पंजीकरण किए गए और 243 आवेदकों ने मौके पर ही वेंडर का चयन किया। शिविर के दौरान लाभार्थियों को इंडक्शन कुक टॉप भी वितरित किए गए। ग्राम रथ अभियान के तहत जिले में पिछले दिनों विकास रथों को कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया गया। ये रथ जिले के अलवर ग्रामीण, रामगढ़, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, कठुमर और थानागाजी में विभिन्न क्षेत्रों में 15 दिनों तक संचालित होंगे। इन विकास रथों के माध्यम से 13 सरकारी विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और पात्र लोगों को इन योजनाओं से जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। जिले में संविधान निर्माता और भारत रत्न से सम्मानित डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती श्रद्धा भाव से मनाई गई। शहर में कई स्थानों पर कार्यक्रम और समारोह आयोजित हुए। इसी कड़ी में जेल सर्किल से अंबेडकर सर्किल तक मैराथन और स्वास्थ्य दौड़ के साथ शोभा यात्रा भी निकाली गई। अंबेडकर छात्रावास में विचार गोष्ठी और सामुदायिक भवन में जनसभा का आयोजन हुआ। वहीं महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के अवसर पर भी जिले में कई कार्यक्रम हुए। कलेक्ट्रेट सभागार में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। नगर निगम कार्यालय सहित सभी उपखंड कार्यालयों में महात्मा ज्योतिबा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा लेकर समाज के विकास का प्रण लिया गया। सरिस्का बाग परियोजना की बफर रेंज में इन दिनों बाघिन ST19 और उसके चार शावकों की अच्छी साइटिंग देखी जा रही है। सरिस्का में वर्ष 2008 में बाघों के पुनर्स्थापन के बाद अब यहां बाघों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। जिले में पिछले दिनों मौसम के कई रूप देखने को मिले। कभी तेज गर्मी तो कभी आंधी बारिश और ओलों का दौर चला। फिलहाल जिले में एक बार फिर से तेज गर्मी का दौर शुरू हो गया है। बढ़ते तापमान को देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे दिन के समय अनावश्यक कार्यों के लिए घर से बाहर ना निकले, साथ ही तरल पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। इधर जिला प्रशासन भी तेज गर्मी से लोगों के बचाव के लिए प्रयासरत है। वहीं नगर निगम की टीम शहर की सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रही है। जयपुर में आयोजित ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार में भाग लेने आए पोलैंड, थाईलैंड, स्लोवाकिया, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी देशों के टूर ऑपरेटरों के दल ने पिछले दिनों सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान प्रतिनिधियों ने इको टूरिज्म गतिविधियों और टाइगर सफारी का भी लुत्फ उठाया। सरिस्का में पिछले दिनों वन्य जीव गणना संपन्न हुई। इस बार बघेरों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। इसके अलावा लंगूर, बंदर और नील गाय की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही अलवर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है प्रादेशिक समाचार। पहली आजरी खास खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र निर्माण में समाजरी भागीदारी ने राजनीतिक व्यवस्था सो कारगर बतायो। देशभर में काल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रो आयोजन, राज्य स्तरीय जलसो जयपुर आज झारखंड महादेव मंदिर में वेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरा मात है, राज्य रा विकास खातर केंद्रीय मंत्रियों मुलाकात करी। और पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव रो प्रकोप जारी, दिन रस आ गए रात भी घने गरम। समाचार आ रहे सागे मैं रचना पारिक और अब है समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत बनाबा खातर सगलाऊं एकजुट हो बारी अरज करी। वे कया के राष्ट्र निर्माण में समाजरी भागीदारी राजनीतिक व्यवस्थाओं बत्ती कारगर है। प्रधानमंत्री आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग री 45वीं जयंती जलसा में बोल रहा। वना संस्थान में नया बनिया ध्यान मंदिर उद्घाटन भी करियो। इन मौके श्री मोदी पर्यावरण खातर जिम्मेदारी, नौजवाना ने रोजगार और

0: आंतरिक सुचितारी भावना रेसागे राष्ट्र बनाबामाए सगड़ाओ मिलर काम कर बारी अरज करी।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: प्रधानमंत्री कया के आध्यात्मिक केंद्रारा समर्थनों कास्कारा ने प्राकृतिक खेती ने बढ़ावो देवा और धरती ने नुकसान देवा वाला रासायनिक उर्वरक सु बचावा माए इमदाद मिल सके है। देशभर माए काल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनायो जावेला। सोमनाथ मंदिर माए विया हमला रा 1000 बरस और मंदिर पुनर्निर्माण रा 75 बरस पूरा हो बारे मौके ओ पर्व मनायो जा रियो है। राष्ट्रीय जलसो गुजरात रा सोमनाथ मंदिर माए अमृत पर्व रा रूप माए मनायो जा रियो है। प्रधानमंत्री श्री मोदी री मौजूदगी माए काल ध्वज पूजा वेला अमृत पर्व रे मौके पुनर्निर्मित मंदिर रा शिखर रो 11 तीर्थ स्थलारा जलों अभिषेक करियो जावेला। प्रधानमंत्री श्री मोदी कया के विकसित भारत खातर इन भातरा मौका नुवी ऊर्जा देवे है।
1: कल सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं।
0: राज्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनायो जावेला। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुरा झारखंड महादेव रामिंदर माए वेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जलसा माए शामिल वेला। कला और संस्कृति महकमारी शासन सचिव सुचित त्यागी बतायो कि इन मौके प्रदेश भर माए शिव मंदिरा माए खास धार्मिक कार्यक्रम वेला, सागे ही राष्ट्रीय आयोजन रो सीधो प्रसारण भी करियो जावेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली रा दौरा माथेरिया वणा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल उ मुलाकात करी। इन दौरान राज्य माए जल जीवन मिशन री प्रगति, राम जल सेतु लिंक परियोजना और जमुना जल समझौता माथे चर्चा करी गई। सागे ही राजस्थान खातर न्यारी न्यारी महताऊ सिंचाई और पेयजल परियोजना वा खातर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री शर्मा केंद्रीय ऊर्जा आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल सु भी भेंट करी। इन दौरान राजस्थान माए ऊर्जा हल्का माए आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा और शहरी विकास सु जुड़िया विषय माते बातचीत हुई। वणा भाजपा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय महासचिव बी एल संतोष सु भी भेंट कर हाल ही माए विया विधानसभा चुनाव माए पार्टी री जीत री बधाई दी। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव आज अलवर माए साइकिल रैली ने हरी झंडी दिखा रवाना करिया। रैली माए बड़ी तादाद माए महिलावा भाग लीना। श्री यादव सगड़ा ने मातृ दिवस री शुभकामना मा देता थका कया के महाने जन्म देवा वाली मां और धरती माता दोनों रो आभारी रहनु चाहिए। आरे बिना मिनख रो अस्तित्व नहीं रह सके है। केंद्रीय मंत्री श्री यादव और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज अलवर खैरथल तिजारा और कोटपुतली हलकारा करीब 10,000 करोड़ रूपया लागत वाली विकास परियोजना वारी समीक्षा करी। अलवर माए प्रेस वार्ता ने संबोधित करता थका श्री यादव कया के इन विकास कामा ने तय बगतरी मियाद माए पूरो करियो जावेला।
2: जो राम जल सेतु परियोजना है उसमें विशेष रूप से डडीकर का रिजर्वायर, नीमराना का रिजर्वायर, अलवर भरतपुर चंबल मेगा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को लेकर के, यमुना लिंक प्रोजेक्ट हरियाणा और राजस्थान को लेकर, राणा प्रताप सागर से बिलासपुर वाटर लिंक प्रोजेक्ट को लेकर, उसके साथ ही अलवर शहर के वाटर सप्लाई के 25 करोड़ के विषयों को लेकर, उसके साथ ही जहां तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का विषय है, रामगढ़ में जो हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहते हैं वो हमारा एनसीपी जोन में आ रहा है, उसको लेकर के चर्चा हुई।
0: शिक्षा मंत्रालय गर्मी री छुट्टियां माए देश भर स्कूल माए भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर राखेला। एक हफ्ता माए ओ शिविर भारतीय भाषावा माए बुनियादी संवाद कौशल सिखाबा, शब्दा ने जानबा, आपरो परिचय देवा और रोजमर्रा जीवन री बातचीत और संस्कृति री सराहना माते केंद्रित वेला। इनरो मकसद राष्ट्रीय शिक्षा नीति रे मुजब समावेशी और समा

0: ज्ञान शिक्षा रा दृष्टिकोण ने बढ़ावो देनो है। ये समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो। व्याख्याता कृषि विज्ञान भर्ती परीक्षा 2022 माए पेपर लीक और नकल गिरोरो खुलासो वियो है। एसओजीरा एडीजी विशाल बंसल आज जयपुर माए प्रेस वार्ता माए बताया के भर्ती परीक्षा माए मेल मिलापों पेपर लीक करियो गयो और फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट जरिए नौकरी हासिल करबारी कोशिश करी गई। गिरफ्तार अभ्यर्थी अशोक कुमार यादव पूछताछ माए पेपर लीक री बात कही। एडीजी बतायो के पेपर लीक मामला माए शेर सिंह भी गिरफ्तार करियो गयो है। आरपीएससी रा पहला आला सदस्य बाबूलाल कटारा और उनका रिश्तेदार विजय डामोर ने भी गिरफ्तार करियो गयो है। एसओजी कटारा और आरपीएससी सदस्य बनबारी नियुक्ति प्रक्रिया और उन रिकानी करिया गया पेपर लीक से जुड़िया नेटवर्क री भी जांच करी जा रही है।
1: हमारे द्वारा बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया है। बाबूलाल कटारा के गिरफ्तारी के उपरांत में उनसे पूछताछ करी जा रही है। पूछताछ में तरह तरह के जानकारियां प्राप्त हो रही है। मेन चीज की बाबूलाल कटारा द्वारा स्वयं द्वारा क्या क्या गड़बड़ियां करी गई उसके बारे में जानकारी, इसके अलावा उनके कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने स्वयं ने नहीं करी हो लेकिन उनकी नॉलेज में होगी और क्या क्या गड़बड़ियां हुई है उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन एकत्रित करी जा रही है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इन बीच नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित गड़बड़ियां खातर राजस्थान एसओजी री जांच माए इमदाद करी है। एनटीए इन मामला माए सगला जरूरी डेटा और तकनीकी सहायता भी दे रही है। एनटीए रिकानियों जारी बयान माए कहो गयो है कि 3 मई ने आ परीक्षा पूरा सुरक्षा प्रोटोकॉल रे तहत राखी गई ही। 7 मई ने परीक्षा रा बारा माए कथित कदाचार गतिविधियां रा बारा माए एनटीए ने सूचना मिली। इनरे पछे जरूरी कार्यवाही खातर ये सूचना केंद्रीय एजेंसियां ने भेज दी गई। फिलहाल आरी जांच चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संभावित बाढ़ और लू रा हालात से निपटबा खातर देश ने तैयारियां ने समीक्षा बैठक करी। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह सरकारी एजेंसियां ने तैयारियां रो जायजो करो। शुरूआती चेतावनी प्रणालियां संसाधन री तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय री समीक्षा करी। गृहमंत्री देश में करिया जा रिया दीर्घकालीन बाढ़ निवारण उपाय री प्रगति री भी समीक्षा करी। जनमाय महताव ढांचागत परियोजना वान बचाव नदी प्रबंधन पहल और पूर्वानुमान में वैज्ञानिक प्रगति भेली है। बैठक में जन जागरूकता जानमाल और नुकसान ने रोकबा खातर निर्माण कार्यक्रम जरूरी राहत सामग्री और चिकित्सा तैयारियां चावता भंडार ने पक्को करबा माथे भी चर्चा करी गई। बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर और आरएसआर रा हल्का माए हीट वेव रो असर बणियोड़ो है। मौसम महकमो आवता 2-3 दिन खातर पश्चिमी राजस्थान रा कई जिला माए तेज गर्मी और लू खातर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करियो है। 8 दिन रह सके रात माए भी हीट वेव रो असर रह सके है। आज भी आ जिला माए लू रो असर रियो। जिन जिला माए दिन रो पारो करीब 44-45 डिग्री सेल्सियस मापियो जा रियो है। वठी ने चित्तौड़गढ़ बीकानेर उदयपुर जालौर और श्रीगंगानगर भी तेज गर्मी री चपेट माए हैं। अठी ने पूर्वी राजस्थान रा जिला माए बतो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज करियो जा रियो है। हालांकि जयपुर अलवर दौसा करौली सीकर टोंक और झुंझुनू माए धूप री तपिश और उमस लोगों ने परेशान करी है। सुवारे सिंजा हल्की हवा चालबासु मामूली सी राहत मिल रही है। कालो राज्य माए नया पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबारा आसार है। इनसु कई जिला माए और बिरखा होबारो अंदाजो है। सवाई माधोपुर जिला माए ढांडा ढोरी मुंहपका खुरपका बीमारियां बचाबा खाटा टीकाकरण करियो जा रियो है। पशुपालन महकमा रिकानियों ओ अभियान 15 मई तय चालेला। महकमारा संयुक्त निदेशक डॉ राजीव गर्ग बताया कि जिला माए हाल तई 2.5 लाख बत्ता पशुआर टीका लगाया जा चुकिया है। वणा पशुपालकों गोवंशो टेम माथे टीकाकरण करवार इन अभियान माए भागीदारी निभावारी अरज करी है।
2: सवाईमाधोपुर जिले में खुरपका मुंहपका रोग के लिए जो FMD टीकाकरण कार्य का 7वां चरण अभी इस वर्ष राजस्थान के अंदर सवाईमाधोपुर जिले ने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करते हुए अधिक से अधिक पशुपालकों को लाभान्वित किया है। मेरा समस्त जिले के पशुपालकों से अधिक पशुओं में अपने टीकाकरण कराने का आह्वान किया जाता है ताकि हम इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकें ताकि ये पशुओं को नुकसान न पहुंचा पाए।
0: उत्तर पश्चिमी रेलवे बाड़मेरों हरिद्वार बीच कालू खास रेल

0: गाड़ी चलावेला और सेवा सप्ताह में दो भगत चालेला। उत्तर पश्चिमी रेल वाला मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन रे मुजब ये रेलगाड़ी बाड़मेरू हर सोमवार और गुरुवार ने मुहैया रेवेला या खास गाड़ी 16 जिला तई चालेला। और अब आखिर माए खास खबर एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र निर्माण में समाज री भागीदारी ने राजनीतिक व्यवस्था सु कारगर बताया। देशभर में काल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रो आयोजन, राज्य स्तरीय जलसो जयपुर आज झारखंड महादेव मिंदर में वेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली रा दौरा मत है, राज्य रा विकास खातर केंद्रीय मंत्रियों मुलाकात करी। और पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव रो प्रकोप जारी, दिन रे सागे रात भी घनी गर्म। इन रे सागे ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन अठाई पूरो वियो। माको आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमार है 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। श्रोताओं, शाम के 7 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं चौपाल।

0: चौपाल कार्यक्रम सुनना सगला हेताड़ू श्रोताओं ने घने मान सो गुरविंदर बिश्नोई
1: और दीनदयाल शर्मा रा राम राम।
0: दीनदयाल भाई कई हाल चाल है, कई है नविता जी?
1: गुरविंदर भाई हालचाल बहुत बढ़िया है और नविता जी तो फिलहाल आ है कि मौसम दिन बर दिन बदल रही है।
0: तो हमें भाई देखो आज चीज तो हाथ में है कोनी और ज्यू ज्यू दिन आगे बढ़ रिया है त्यू त्यू तपत
1: बढ़ी बिल्कुल।
0: और गर्मी तेज गर्मी रा आसार अगर हुए और साथ ही साथ है तेज बरसात रा आसार हुए, इन बात री उड़ीक वे किसाना ने के भाई अच्छी बरसात वे अच्छो मौसम बनियो तो रहे और अच्छी फसल पाके।
1: पर आ सब चीजा गुरुंदर भाई टेम मा तो हुए जन काम आवे है नी, बेटेमरी तो बरसात ही काम री कोनी।
0: बिल्कुल टेम रा निपजे नी वे मोती निपजे।
1: बिल्कुल
0: टेम बावे जना वे टेम बावे जद के जद भाई बरसात हुए।
1: बिल्कुल सही बात है, इस वास्ते किया करे कि हर चीज समय रे अनुकूल जी की है बा फायदो दिया करे और अपन वास्ते बढ़िया होया करे। तो समय रे साथे चालनो पड़ी दोस्तों आपने और समय री जी की मांग है बा आके वे के आओ तो टेम ने आप यदि पहचान लो तो सब बढ़िया है।
0: बिल्कुल दीनदयाल भाई समय परिवर्तनशील है और परिवर्तन जो को है प्रकृति रो नियम है। टाइम हमेशा बदलतो रहे, हर पल बदलतो रहे, उन बदलने रहे साथे साथे ही मिनक धरा धरती खेत खलियान सब में भी बदलाव आवे।
1: आवेसा
0: कुछ बदलाव महसूस करीजे और की बदलाव ऐडा वे जका बहुत सूक्ष्म हुए जका ने आपा महसूस नहीं कर सका।
1: सामने नहीं दिखे।
0: हाँ, अब देखो कि आपा कोई छोटो पौधो लगायो और होले होले देखो वो बड़ो हो जावे तो ये रे महीने जिन गतियों वो बढ़े तो उन गति ने आपा महसूस कर सका क्यों रोज आपा आंखें देखा
1: देखा
0: लेकिन वो रे बढ़ते हुए आपा वो देखा नहीं तो आपन लागे कल ही जितो हो और आज ही हो इतो ही।
1: सही बात है, थोड़ा टाइम मुझे देखा जन ठा पड़ेगा। हाँ तो इतना दिन पहले तो इतो सुख हो यार अब इतो मोटो हो गयो, जब रोज रोज देखा तो ठा नहीं पड़े।
0: बिल्कुल, और कृषि जो टेक्नोलॉजी है यार कृषि जो की इंजीनियरिंग है ये में भारतीय जका कृषि वैज्ञानिक है वाणो भी बहुत मोटो और लूठो नाम है और बहुत कई तरह रा ऐडा अनुसंधान है। वह अनुसंधान आज भी जका है किसाना ने लाभ दे रिया है, खास तौर माते राज्य सरकार और चाहे केंद्र सरकार और कई इन तरह रा सेंटर बनाया है जियरे महीने बीज जको है उए में भी बदलाव करने रो प्रयास की रही है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर माते देखा तो खेती रे जीन जका वे
1: बीजारा जी का जीन्स
0: बीजारे जिंसा में बदलाव मुजब चाइना बहुत एडवांस काम करियो है और उए में चाहे वे फल फ्रूट वो है नी और चाहे वे खेत खलियान री कोई फसल हो वे आज जका बीजारा जीन्स है ये में बदलाव कर उपत बढ़ाई है।
1: बिल्कुल,
0: और वे कई तो ऐडा बदलाव करिया है कि स्वाद रंग रूप और आकार में भी बदलाव जींसा में हल्को सो

0: जो है फेर बदल करियो है।
1: गुरिंदर भाई जी का बदलाव आप कई बार देखा हाँ, कई चीजा तो ठीक है भाई ओपत बढ़ाने वास्ते करियो है, पर कटी कटी एडो नहीं लागे कि गैर जरूरी बदलाव भी इन तरह का हो रहा है। और कई बार आप देखा बार में एक जगह देख रहे हो कि चाइना मायने खीरो जी को पैदा हुए वो 8-8, 10-10 फुट लंबो।
0: बिल्कुल, और जो का बिना बीज रे मतीरा वे भी मायनू लाल सुर्ख और मीठा,
1: हाँ बिल्कुल
0: और उनमें भी बहुत मोटा मोटा।
1: मोटा
0: तो
1: मोटा
0: देखो के आज आप अगर भारत देश की बात करा, पूरा भारत देश कृषि प्रधान देश है और 140 करोड़ ज्यादा आबादी आपानी है, और इन आपानी जितनी चाइना री आबादी,
1: बिल्कुल
0: अगर आप दोनों देशों की आबादी अगर गिना तो करीब करीब 2.5 अरब है
1: बिल्कुल है
0: नहीं?
1: सर।
0: तो इतनी आबादी रा जो पेट भरनो और वारे वास्ते खाद्यान्न सुरक्षा रो भाव पैदा करनो, इन वास्ते जरूरी है कि उठेरा जो कृषि वैज्ञानिक है वे नित्य नया कोई आविष्कार करे।
1: और आविष्कार इन तरह करे कि बिरू मानव सभ्यता जी की है बिरू माते कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, मोटी बात तो आ है गुरिंदर भाई।

0: बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कृषि वैज्ञानिक आर माते और साथ ही साथ वटारी राज्य और केंद्र सरकार वास्ते भी आ जिम्मेदारी बन जावे कि भाई बे अलग अलग तरीका सु किसान री मदद करे और उन इमदाद रे माते उन मदद रे माते जी को है किसान भाई आप रो जी को है, क्योंकि कृषि भी तो एक तरह रो जुओ हो जावे कई बार,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि मौसम रो कोई भरोसा नहीं
1: बिल्कुल,
0: है।
1: मौसम पानी रो जको है मेल है और ये रोई ओ खेती जको खेल है।
0: खेल है
1: और देखो कि आज थोड़ा का अपन लारे जावा तो कृषि विश्वविद्यालय गिनिया चुनिया
0: हाँ
1: वे ने अपन भारत रे मुजब माना है। तो ज्यो ज्यो सरकारा सामर्थवान बनी त्यों त्यों कृषि केंद्र बनाई जिया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनने बाद वहां उठे रिसर्च रा सेंटर खुलिया और वहां में अनुसंधान हो बीजरे महीने ज्यादा उपत या खरपतवारों बचाव या हारी बीमारियों बचाव वास्ते कई तरह रा जगह है बीजरे महीने
0: परिवर्तन किया।
1: परिवर्तन करियान खोज हुई। तो भाई देखो कृषि ने जितना आप आधुनिक तौर तरीकों करा उतनी ज्यादा उपज करा। तो और जगह कृषि रा उपकरण है वहां में भी देखते देखते कितो तो बदलाव आ गयो। कटे तो देखो पश्चिमी राजस्थान में तो ऊंट और एक हड़ू खेती करता
0: एक हल होती
1: पूरे दिन, वो अगर आदमी लागे रहता तो मतलब कहीं एक अड़ाव दो अड़ाव हली खेती होती कोनी। और जो को कोई समतल एरियो है नागौर क्षेत्र या अठिन जवा आप भोपालगढ़ है बिलाड़ा तो अठे बड़दाऊ भी खेती होती।
0: होती सर।
1: तो बलदारी जोड़ी हूं हमें कितो खेत आपा जोत लिया, लेकिन देखते ही देखते ट्रैक्टर आयो और ट्रैक्टर रो चमत्कार ओ यो कि आज किसानारी गांव रे महीने हर ढाणी रे आगे ट्रैक्टर उभियो।
0: बिल्कुल सर।
1: ट्रैक्टर रे साथे देखो कृषि जका यंत्र है ये में तवी है कल्टी है हारो है और तो और जो वो फसल रे वास्ते कहीं कह हुए ने थ्रेसर है।
0: थ्रेसर हाँ
1: तो कई चीजा एडा और मैं आपा ये जका जरिए मोबाइल में देखा नहीं तो आंध्र प्रदेश रान पंजाब रान गुजरात रा किसान जकी आपरी फसल वास्ते आवश्यक कृषि उपकरण चीजें नहीं वे खुद मैन्युफैक्चर करने लग गया
0: हाँ
1: के
0: माने मिलन
1: भाई
0: वाला है गुरविंदर भाई
1: हाँ
0: जिका इन तरह का अटैचमेंट बनावे ट्रैक्टर माते, तो मने आश्चर्य हो तो कई बार मैं बैठा रहता जन बैठा टे बनाने वास्ते आवता अटैचमेंट आंध्र प्रदेश हूँ कर्नाटक हूँ बटन टेट साउथ हूँ जन मैं क्यों बहने कहीं पोसाओ तो ला बटू अटे आवे अटे अटैचमेंट बनवावे पाछो लेन जावे जन बे कई गणित बताई के वास्ते उन मायने वो फायदा रो सौदो है बैठ वास्ते।
1: बिल्कुल हमें देखो कि लाटे रो टाइम आवे जना कितना मोटा मोटा बे
0: हाँ
1: मशीन हड़का माते जावे तो के बे कहीं है के गऊ रे वास्ते।
0: बिल्कुल
1: तो भाई पहला मारवाड़ में घणो गऊ निपुस्तो ही कोनी तो बन वास्ते इन तरह रा जका अटैचमेंट रा उपकरण बा होता ही कोनी।
0: होता ही कौन
1: हमें ज्यो ज्यो फसल की चीज री बढ़े त्यों त्यों उए रे वास्ते उपकरण री जरूरत पड़े। मूंगफली री बात करा तो मूंगफली री जदू पश्चिमी राजस्थान में खेती हुई तो कई मूंगफली मुझे भी हारा बन ला गया। तहसीला में भी ये रो कहीं है हर जड़ी माटी बेड़ो उए रो जो को उपकरण रो जो को रूप है वो लोग देन लाग गया क्योंकि लोगारी जो की सोच है वह वैज्ञानिक होगी।
0: बिल्कुल
1: तो क्यों रो मतलब है कि इन तरह रा यंत्र खरीदने वास्ते राज्य सरकार मदद देवे ये में सब्सिडी। अगर 1 लाख रो कोई उपकरण है तो 40-50% अनुदान राज्य सरकार देवे।
0: बिल्कुल देवे गुरिंदर भाई और राज्य सरकार की आज की मदद है बा कृषि वैज्ञानिक के माध्यम से जिका किसान भाई है बेन वास्ते बहुत जिको है फायदा रो सौदो होवे और बे कम लागत रे माते बेने जिन टाइम उपकरण मिल जावे और अच्छो कृषि कर्म बे कर पावे अच्छी बढ़िया खेती होवे ओपत बढ़िया होवे तो निश्चित रूप से बेनो जीवन स्तर भी सुधरे और ओपत बेनी बढ़े।
1: भाई लोग इन योजना ने आपा कृषि यंत्र सब्सिडी योजना भी कहवा। तो एक तो जो को भी आदमी इन मुजब इन योजना रो लाभ लेनी चाहे और ऋण लेनी चाहे तो जरिए भाई ग्राम विकास की जकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उए उन ले सके या किसान क्रेडिट कार्ड है उनसु जो को यंत्र खरीद सके। तो एक तो उए रे नाम री जमीन होनी चाहिए अगर मान लो ट्रैक्टर जुड़ियोड़ो कोई उपकरण

0: तो उन टेरिटरी आरसी होनी चाहिए।
1: हाँ वो आपने नाम होना
0: हाँ
1: चाहिए।
0: तो आप पोर्टल माते जान आवेदन कर सको। देखो दीनदयाल भाई, सरकार लगातार आम जीवन रे विकास वास्ते योजना बनावे।
1: बिल्कुल सर।
0: जरूरत आज इन बात रही है कि वह योजना कितना लोगों तक पुगे। हमें मान लो कि गांव रे मैंने आज 5-10 साल पहला कई अड़ी योजना ही जकर उठाई को लाग,
1: सही बात है।
0: लेकिन जी जो मोबाइल आयो, जागृति आई, तो लगभग हर योजना री जानकारी गांव में होगी। गांव गांव में ई मित्र भी खुल गया। अब मैं मान लो कोई बालिका है, पढ़ाई कर रही है, वे मान ले घर रे मायने माता पिता मऊ कोई एक देहांत की, तो उन बच्ची ने वार्षिक रूप में आर्थिक सहायता मिले।
1: मिले सर, आम आदमी रे जीवन वास्ते, विशेष रूप से बालिकाओं वास्ते आपकी बेटी जी की योजनाएं हैं राज्य सरकार।

0: 1 लाख।
1: सही बात है।
0: लेकिन जी जी मोबाइल आयो, जागृति आई, तो लगभग हर योजना री जानकारी गांव में होगी, गांव गांव में ई मित्र भी खुल गया। अब मैं मान लो कोई बालिका है, पढ़ाई कर रही है, मान ले घर मायने माता पिता में कोई एक ध्यान तो क्यों, तो उन बच्ची ने वार्षिक रूप में आर्थिक सहायता मिले
1: मिले साथ। आम आदमी रे जीवन वास्ते, विशेष रूप से बालिकाओं वाले वास्ते आपकी बेटी जी की योजनाएं हैं राज्य सरकार री, बीरे माध्यम से शाला दर्पण पोर्टल माते आपने जानो पड़े। और पहले जी की 8वीं कक्षा तक री यदि कोई बच्ची है गुरिंदर भाई, बीरे साथ यदि कोई हादसा हो गयो कि बिने माता या पिता कोई एक री या दोनों री डेथ होगी, तो बिने 2100 रूपया वार्षिक दीवेज है। और साथ ही साथ यदि 9वीं 12वीं कक्षा री कोई बच्ची है तो बिने 2500 रूपया री वार्षिक सहायता इन योजना रे अंतर्गत मिलेगा।

0: तो दीनदयाल भाई हताई गणी उगी इन गीत ही हुन लियो
1: बिल्कुल सर,
0: और हमें कार्यक्रम रो भगत हो रियो है पूरो। तो चौपाल कार्यक्रम संपन्न करण सारू आपरे साथी गुरविंदर बिश्नोई
1: और दीनदयाल शर्मा ने दिलाओ सीख,
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चौपाल। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज।

0: बात तो खुली होनी पड़ी हो डाली राहुल भाई आवरी
1: तो खोलना चाहिए ना टाइम पे
0: खोल का कौन कहे
1: आडो खोल लो चाहिए नहीं पहला
0: अरे तो बात खोल डाली होनी पड़ी बस कहूँ है जो कहो क्या न्यारी न्यारी बाणी बोल चुकी है कौन है
1: देखो देखो ध्यान देखो
0: ओह देख है मन नहीं होना होना दो दिल टूटा या फूटा
1: फूटा है
0: अरे हूँ एक बात कहूँ
1: हाँ,
0: भाई नरिया तो मैंने ओळखी जी को
1: हाँ, देखो मनोरमा
0: ओ घोनारमा
1: मनोरमा
0: अरे हाँ साहब घोनारमा बात घोनारमा उनाला आई गया कई बात करे नहीं बात दो दिल हारे क्या बात है हारिया थे बहुत फिर क्यों उतावड़े महंग दी थाने हमारे कोई काम गए टाबर पड़े में हड़ी काम करती हड़ी है
1: मैं नहीं करूँ
0: नहीं करे तो दर में पड़ जा बात करे करूँ कौन ही
1: मैं सिर्फ गीत हुए करूँ
0: हाँ गीत हुए अरे थे जी थोड़ा बोलो चिंता मत करो कितना दिन हो क्या नहीं के डीलर फूका दे सेवड़ तो ठा पड़ जी हाँ जिन दिन लोन पूरा हो नहीं वो उन दिन ठा पड़ जी थाने आज क्या उनका उनकी मतलब को मुतबल नहीं है बस बात है मैं क्या उन्हें छोड़ दू मारे कहूँ मारे में क्यों कोई क्या ठेको
1: नहीं नवलो बात है क्या वो जीत तो
0: अरे तावड़ो पड़े भाई थे देखो एक बात सुनो ऐडा गीत सुनो जी कोई मंठा को पड़े नहीं क्या क्या बात सुनो भाई कोई मिनक है देखे के मान लो है एक दिन भौंता फिरे कोई ध्यान नहीं रखे तो भारत तो दुश्मन बैठो गर्मी कोई क्या क्या क्या भाई कोई है मित्र थोड़ी है
1: मित्र तो नहीं है
0: अटी लू ला लू लपर को ला गोवे कोई है जो चक्कर आई गावे कोई हेटा पड़गा वो कोई झाग निकल जा फिर घर नहीं क्या थे है जो अस्पताल भी चैन घर भी चैन दौड़ो मुतबल कौन भाई है मुतमा साहब कहूँ सुखी हूँ तावड़ो पड़े तो भाई देखो आप कोई खास काम है तो बाहर निकलो तो बाहर बाहर निकलो आप चंद्र के जाओ पर दिनों के पेगो कोई काम कर लो दिन बदिए कर लो
1: मैं आप दिन बदिया हूँ
0: हाँ दिन बदिया हो तो कहीं को नहीं पर मैं तो क्या भाई दिन रहो तो हूँ दौर हो रो तावड़ो क्या नीमड़े टोबैटो काट लू और मारा क्या कि भाई ठीक है कि मारे में है जो क्या नहीं हूँ तो नेमी आदमी हूँ
1: हाँ।
0: अरे हिसाब
1: मैं नेमी आदमी हूँ टाइम टू टाइम आऊँ जानकारी दे आपने
0: अरे हाँ भाई
1: गीत हुना हूँ बढ़िया बढ़िया
0: हाँ थारो बहुत भाई भलो हो थे है जो क्या दिया मैंने है जो कर दियो है जो का सो
1: नियाल
0: हाँ कर दिया नियाल होगा नियाल में हाँ ए गोना भूखा हुआ घड़ी मैं क्या बात मुतबल कौन भाई तुम कह दियो मैं तो काम करा ही कौन बस नहीं करो
1: आप रो काम करना
0: नहीं मारे को करण भाई मारे नहीं करण हूँ तो कौन थारो नहीं क्या भलो नहीं वे माँ भलो वे भगवान थाने
1: अरे आप रो काम तो करना ही पड़ी रे आप रो नहीं करण जन की
0: अरे भाई देखे कुदरत लोग है जो नहीं अर्ज करे के हे ईश्वर हे अल्लाह हे भगवान हे खुदा अरे है जो को प्रभु मारी क्या जो कोई कह क्या भाई जिंदगी में कोई हो रही लाओ और कोई मारी क्या नहीं के भाई देखो कहो क्या बाहर है जो उतरे।

0: वाह भाई ये वाह,
1: देखिए
0: ओहो बारो मेरा जीवन सुंदर सवारो। हाँ बात है, आ तुम कह रहे अरदास ही चौकी है मंदिर
1: चौकी अरदास है।
0: हाँ नेरा तो बेटा गीत सुनते ही भाई जी
1: और गीत लिखियो है कैफी आजमी जी।
0: ओ आजम गढ़ा
1: हाँ आए आज दिन इस फोत वे और इतना बढ़िया बढ़िया इन्होंने गाना लिखियोड़ा है। महान भारतीय उर्दू कवि गीतकार और फिल्म पटकथा लेखक भी था।
0: ओहो
1: हिंदी सिनेमा में क्रांति लाए दी थी आप गीतों उन फिल्मों।
0: हाँ बैठा देखे कि एक मिनट रे मगज में कोई बात नहीं उपजे गए तो उन्हों आके संसार में फर्क पड़े तो ये मैं एड़ो गीत लिखे
1: बिल्कुल कितनो बढ़िया
0: कहनी के भाई कहनी कालजी कालजी गीत है
1: बिल्कुल।
0: तो भाई देखे काल जो कट जरा गीत है तो आने लिखा है कैफी
1: आजमी
0: गाजमी जी है नी
1: आजमी।
0: हाँ तो आनी है जी को किस तरह गुल पेश करा कोटि कोटि नमन करा मंदिर फूल चढ़ाओ बड़ा
1: एड़ा ही जी का पर छत्रपति साहू महाराज भी आज दिन फोत वया। कोल्हापुर रियासत रा एक मराठा शासक है और समाज सुधार केता और ए विन डैम में 1902 में 50% आरक्षण लागू करियो तो नौकरियों में
0: आपने राज में
1: पिछड़ा वर्ग वास्ते।
0: हाँ अच्छी बात है भाई देखे
1: कितना दूरदर्शी था।
0: हाँ हाँ कह नहीं परोपकारी मीन खान है बरोबर लावनी चाहता मिटावनी चाहे मिटे ही और गरीब गुरबानी है जो आगे लाया तो भाई देखे गेड़ा बिरला मीन है जो कमी वह है और तो जग जावा काम घना करिया सखत खिलाफत हुई करियो का आपरे घोड़ा रो अस्तबल होनी उठ ले जान मोड़ा मोड़ा क्या मरीड घोड़ा ने उबा करिया और एक बार तकड़ा घोड़ा उबा करिया फिर बीच ने किया चीना जद बे कहो है कि मोड़ा माड़ा हाज को तो बाहु क्या नहीं मैं ताकतवरी लाता खान किया परा जद कहो भाई क्या देखो मोड़ा पतला है मरियल घोड़ा है अनि जीवनो हक कूद है तो यूं यूं कहो है कि राज ने मैं ही नहीं है हंगारी भागीदारी तो ऐडा बिल्ला काम करने वाला साहू जी महाराज छत्रपति होया तो अनि है जी कोई नहीं भूल सके पर बात पर है जी को आने धोक देवा कोटि कोटि नमन करान मंदिरा फूल चढ़ाओ बड़े
1: और हरि शंकर वासुदेवन जी आज दिन फोटो यार अपर भारतीय इतिहासकार था और लेखक भी था। इनका मुख्य कार्य तो यूरोप रो इतिहास और भारत और रूस रो जो संबंध था विनोर माते इनोर पूरो लेखन केंद्रित है।
0: वाह भाई वाह देखे मोटा होचा रहा लिखा रहा और बहुगुणी मिन खा तो आनी कोटि कोटि नमन है मंदिरा फूल चढ़ाओ बड़े
1: और आज दिन फोटो यार मैक मोहन हिंदी सिनेमा अभिनेता है था सांबारो आप जानते जो शोले फिल्म में
0: सांबा
1: नहीं वो सांबा बनता नहीं
0: ठीक ठीक ठीक गब्बर सिंह रहते
1: सांबा
0: शोले फिल्म रामगढ़ में आई जी को
1: हाँ
0: बहुत देख लो
1: खलनायक भूमिका निभाता
0: था। नहीं नहीं मैं तो हाई एकदम
1: वे भी आज दिन कई पूरा जीवन में आप अभिनय कर आज दिन फोत हुए
0: अरे भाई अदाकारी फनकारी राखी और शक्ति कपूर ही है क्या गया पर
1: कई
0: दो तीन दिन पहले फोत होगा आज सौ का काम करना है गया तो भाई देखे आज मंदिर रहा फूल चढ़ाओ कोटी कोटी कला नहीं याद कर
1: और पंडित शिव कुमार शर्मा भारतीय संतूर वादक और संगीतकार था ये भी आज दिन फोत हुआ है और जम्मू कश्मीर में संतूर ने हिंदुस्तानी शास्त्र संगीत ने मुख्य मंच मत लावन इन्होंने श्रेय दिया।
0: वाह वाह जग जाओ काम करियो तो कोटि कोटि नमन है मंदिरा फूल चढ़ाओ भले।
1: और अनिल भल्ला जी वे भी आज दिन फोत हुआ और जंग में इन्होंने पाकिस्तान 1971 जंग है नी इनमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका है थी स्क्वाड्रॉन लीडर है
0: तो कह नहीं के भाई क्या बड़ा वीर पुरुष और फौज में नाम करियो भाई
1: हवाई हमला में अंजाम दियो
0: तो। दियो भाई देखे उड़िया उड़ी है काम करिए तो नहीं कोई नहीं भूल सके कोटि कोटि नमन है मंदिरा फूल चढ़ाओ बड़े।
1: आज दिन फोत हुआ सुधाकर राव राजू सिंह नायक एता राजनीतिज्ञ और महाराष्ट्र का मुख्य मंत्री रूप में भी इन्होंने काम करियो।
0: हाँ भाई देखे आपने क्या नहीं किया आपने ओदे मदसों का काम करिया और क्या नहीं उर्दू मार गए आया को जाई तो कोटि कोटि मंदिरा फूल चढ़ाओ बड़े।
1: अबे जो जन्म गयो वीणा के बारे में
0: अरे बता दे भाई ये पड़े कोई तावड़ी तो कोई दो आंकड़ी गीत सुनाओ
1: तावड़ो
0: तावड़ो कड़ो पड़े।

0: वाह भाई ये वाह, मैं थे हो जा रही थे जे हो जा रही हूं ना, मैं देखियो कोई ठाडो पर बेजड़ होना ये तो कह नहीं के
1: मारे बेजड़ पहले होना तो नहीं
0: वाह होना जी की कौन भाई मैं मेहरबान रखो।
1: अबे आपने जानकारी दे
0: हुर्जवार है पर उत्तर करनो हाल,
1: पर पहले जानकारी तो हूं जो जन्म या इन बारे में बताए दू आपने फटाफट। योगेंद्र सिंह जी यादव भारतीय सेना का एक सैनिक है, कारगिल युद्ध में इन्होंने परमवीर चक्र सम्मानित करियो है। 19 साल की उम्र में वो सम्मान पावन वाला ऐसा
0: कोटी कोटी बधाई देनी है क्या मंदिर रा फूल चढ़ाओ
1: बधाई देनी इन्होंने।
0: हाँ भगवान देखो क्या वीर पुरुषा ने तेरी हाजत रखे और बात भोमरी रिक्शा में है आप जरा बहादुर भरे कह नहीं की परिणाम प्यार करे भरा।
1: पंकज मलिक अभी आज दिन जन्मे था, बांग्ला संगीत वास्ते प्रसिद्ध है, शास्त्र संगीत में और विशेषज्ञता है थी।
0: तो की कोनी जते सेवा करी जी की चौकी अने कोटी कोटी बधाई देनी है
1: इन्होंने मने रा फूल
0: चढ़ाओ अल्लाह सा बड़ा।
1: और आरएन काओ इनन तो आप नाम हुनियो वेला खुफिया एजेंसी में संस्थापक रियोड़ा पर रोरा रोन जड़ो नहीं
0: भारतीय गुप्तचर है भाई
1: गुप्तचर। हां गुप्तचर व्यवस्था रहे संस्थापक है ता पर भारतीय।
0: और देखो ये तो मोटो देश रे वास्ते काम करियो
1: काम करियो
0: अपन।

0: पप्पू राम मनोज गौरा राम सासी आऊ भीकम चंद टाटिया मनोज सुरेश सक्षम भूमि धनी सपना नायरा परी टाटिया खली परी बावड़ी खुदा बख्श खलीफा खुदा दाद बच्चू खान रोशन खलीफा चांसलर ताज मोहम्मद मोहिद्दीन खान अनवर अली मुंशी खान रेहान अली उमेद अली और मराला रिजवान रोशना मस्ताना मगी रवीनान अहमद खान तीरमीर और बावड़ी बच्चू खान अमीन मास्टर अल्लाह रखी शाहबुद्दीन जुबी खेरी नार हाथीड़ा खाड़ा भार सिंह करता राम माजरा भैरा राम रेखा राम उमेद राम चेतन भोम सिंह माजरा और भैया को देखे भाई के एयरफोर्स हूँ बिंदु कार्तिक हिमांशु विनोद मेघवाल भंडू कलऊ दिनेश सोडा रुद्राक्ष भव्यास रमनदीप कीर्तिका सोडा और भाई शहन हैंगी है जिसको कह नहीं लिखिया है और कह नहीं के चौपड़े पाली मधु राम गोदारा परवीन संजना सुनील संगीता गोदारा गोपालगढ़ घनश्याम सिंह चौधरी धर्मेंद्र छिपा श्याम सोनी भल्लाराम ढाका जीवन राम तांडी राजेश दिवरिया किशन जय किशन ब्रजेश आरती खुशी जैसे राजा राम जमर बिश्नोई और भालू अनोपगढ़ जगन्नाथ कालबेलिया सुरेंद्र अर्जुन गीता ममता समता विमला और कुलुम्बो कुलुम्बो और बाकी है भाई चैन है
1: खासा पत्र लिखे
0: हाँ मैं देखा वो तो बांसुर में पहले ये मंडियोड़ा है हमें दो आखिरी अर्जी सी होना

0: वाह भाई महंग बातों बलियों की चौकी होगी और मैं देखा एक भाई थी फटोफट है जी को रसोड़े में आज हुजवार है जी को रसोड़ो तैयार कर दो और भाई शायद कागज पत्री लिख दे गेल मेरी कर दे और हूँ फिर लू माड़ा देखे भाई कहता रही खासा ऊंचा आई गार अंदर हो गो है
1: अंदर
0: प्रोग्राम रो टाइम हो गो पूरा भाई शेण ले वही राम राम
1: राम राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सीमा डेरी गूंज। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। शाम के 8 बजने को है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।
1: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
2: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी। लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
1: उसे बताया क्यों नहीं?
2: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना। जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो, वहां भी दिल कहने से डरता है। और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। अब तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है, बहुत चाहती है।

फिल्म संगीत की शुरुआत में आप सुन रहे हैं फिल्म प्यार तो होना ही था से ये गीत। कुमार सानू की आवाज, विनोद महेंद्र के बोल, जतिन ललित का संगीत।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

इसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं। मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: अभी आपने सुना फिल्म सरफरोश का ये गाना, आमिर खान अलका याग्निक की आवाजें, समीर के बोल और जतिन ललित का संगीत। अभी आप सुन रहे हैं फिल्म बंटी और बबली से ये गाना, सोनू निगम महालक्ष्मी अय्यर की आवाजें, गुलजार के बोल और शंकर एहसान लोय का संगीत।

उदित नारायण, विनोद नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में आप सुन रहे थे फिल्म देवदास का ये गाना, नुसरत बद्र के बोल और इस्माइल दरबार का संगीत।

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में आप सुन रहे हैं अभी फिल्म दिल है तुम्हारा का ये गीत, समीर के बोल और नदीम श्रवण का संगीत।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अभी आप सुन रहे हैं कोई मिल गया फिल्म का ये गाना। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजें, इब्राहिम अश्क के बोल और राजेश रोशन का संगीत।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में आप सुन रहे हैं फिल्म अंजाम का ये गाना, समीर के बोल और आनंद मिलिंद का संगीत। फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश।

0: ए फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। वक्त हो रहा है समाचार संध्या और न्यूज एट नाइन का, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: कर आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, दो कैबिनेट मंत्री और चार राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत आठ क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
2: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को

0: भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपुर निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपुर दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक

0: बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, निल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉ जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की दो दिवसीय यात्रा सम्पन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू हो गई। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दो पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास, समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
1: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में आईएसएसएफ निशानेबाज शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षा कर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके

0: साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heat wave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. He said imported petroleum products should be used judicially in accordance with genuine necessity, which will help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
2: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है, ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है, पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
1: Mr. Modi said today India is advancing on reforms expressed and also building modern infrastructure. Mr. Modi said he will like to assure every family in Telangana that center will continue to work with greater speed to realize your dreams.
2: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है, साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है। ये इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है।
1: Among the major projects unveiled today, including PM Mitra Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park. It is aimed at creating an integrated textile ecosystem under the center's 5F vision, spanning farm, fiber, factory, fashion and foreign markets. Prime Minister Modi also inaugurated the Sindhu Hospital, a state-of-the-art cancer-focused multi-super-speciality quaternary care not-for-profit institution in Hyderabad. Later, Prime Minister Narendra Modi addressed a public meeting in Hyderabad this evening. Mr. Modi said the people of Telangana are seeking change after being let down by both the BRS and the Congress. He said only the BJP's double-engine government can fulfill public aspirations and ensure development. He added that the BJP has formed government in West Bengal with a strong mandate and expressed confidence that similar support is emerging in Telangana.
2: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। यहां बीजेपी का हर कार्यकर्ता जोश से भरा हुआ

0: Yaya Rap. And that's all in the news at 9. Good night.
1: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। रात के 9:15 बजने को हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आप सुन रहे हैं कलाकार गुलाम अली को।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे हैं मन्ना डे की आवाज में फिल्म आनंद रूपम चित्रा का ये गाना, योगेश के बोल, सलिल चौधरी का संगीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं रवि वासरे अखिल भारतीय संगीत सभा।
1: आकाशवाणी इन टू नाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रवि वासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ वीणा रिसाइटल बाय विद्वान डी श्रीनिवास। अकंपनीइंग हिम ऑन मृदंगम इज श्री यशवंत हम्पीहोली

0: and on Ghatam, Shri M. Chandrakant.
1: Vidwan D. Srinivas, Telangana ke ek agrini Karnatak sangeetkar hain. Ek sangeet parampara wale parivar mein janme, Srinivas ne 7 saal ki umr mein apni maa Srimati D. L. Tulsi ke margdarshan mein veena siksha ka Shri Ganesh kiya. 9 saal ki umr tak ve ek baal pratibha ban chuke the. इसके बाद उन्होंने विद्वान श्री एनएस श्रीनिवासन के द्वारा उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। 4 दशकों से अधिक समय से संगीत की सेवा के कारण वे अब एक टॉप ग्रेड वीणा कलाकार हैं और उन्हें उगादि विशिष्ट पुरस्कारम तथा डॉक्टर ईमनी शंकर शास्त्री पुरस्कार और वैनिका रत्न वैनिका चक्रवर्ती जैसे उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। एक वैश्विक कलाकार के रूप में श्रीनिवास ने संयुक्त राष्ट्र और लंदन के क्वीन एलिजाबेथ हॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गिटार शैली में वीणा बजाने जैसी नई तकनीकों का आविष्कार किया है जिससे वीणा संगीत की सीमाओं का विस्तार हुआ है। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने 350 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक सच्चे राजदूत के रूप में विद्वान डी श्रीनिवास आज भी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित कर रहे हैं।
0: विद्वान डी श्रीनिवास, ए ट्रायल ब्लेजिंग कर्नाटिक म्यूजिशियन फ्रॉम तेलंगाना, वाज बोर्न इनटू ए म्यूजिकल लीनिएज। ही बिगन द आर्ट ऑफ वीणा एट द एज ऑफ 7 अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मदर श्रीमती डी एल तुलसी। बाय द एज ऑफ 9 ही वाज अ चाइल्ड प्रोडिजी। The advanced training followed under Vidwan Sri N. S. Srinivasan. With over 4 decades of dedication, he is a top grade veena artist with Akashvani and recipient of awards like Ugadi Visishta Puraskaram and Dr. Emani Shankara Shastri Award and the titles like Vainika Ratna and Vainika Chakravarti. A global performer, Srinivas has represented India at the United Nations and also performed at Queen Elizabeth Hall in London. His innovative techniques like guitar style plucking pushed the boundaries of veena music. As an educator, he has trained more than 350 students. A true ambassador of Indian classical music, Vidwan D. Srinivas continues to inspire generations.
1: Aaj raat ke prasaran mein विद्वान डी श्रीनिवास के साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
0: इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट विद्वान डी श्रीनिवास इज अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत।
1: विद्वान डी श्रीनिवास ने अपने वीणा वादन की शुरुआत राग गौला में मैसूर वासुदेवाचार की एक रचना से कर रहे हैं जो आदि ताल में निबद्ध है।
0: विद्वान डी श्रीनिवास बिगिन्स हिज वीणा रिसाइटल विद अ कंपोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार इन द राग गौला सेट टू आदि ताल।

0: अब आप राम स्वामी शिवन की एक रचना सुनेंगे जो राग सरसांगी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है.
1: Now you will listen to a composition of Ramaswamy Sivan in the rag Sarasangi set to Khanda Chapu Taal.

0: अपना वीणा वादन जारी रखते हुए विद्वान डी श्रीनिवास अब त्यागराज की एक रचना प्रस्तुत करेंगे जो राग नासिका भूषणी तथा आदि ताल त्रिस्र गति में निबद्ध है.
1: कंटिन्यूइंग हिज वीणा रिसाइटल विद्वान डी श्रीनिवास विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग नासिका भूषणी सेट टू आदि ताल त्रिस्र गति.

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: That was तन्यावर्तनम played on मृदंगम by श्री यशवंत हम्पी होली and on घटम by श्री यम चंद्रकांत।
0: विद्वान डी श्रीनिवास अपने वीणा वादन का समापन सदाशिव ब्रह्मेंद्र की एक रचना से कर रहे हैं, जो राग अहिर भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: विद्वान डी श्रीनिवास concludes his Veena recital with a composition of Sadashiva Brahmendra in the rag Ahira Bhairavi set to Aditaal.

0: इसके साथ ही आज की रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: With that, we conclude the Veena recital by Vidwan D. Srinivas in the broadcast of Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. He was accompanied on Mridangam by Sri Yashwant Hampiholi and on Ghatam by Sri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। वक्त हो रहा है हिंदी और अंग्रेजी समाचार का, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में रिले किया जाएगा। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
4: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं,

0: हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
0: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।